0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
9: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
9: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
9: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
9: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
11: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
10: सोफी ज्वेलर्स?
11: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
10: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
12: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
13: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
12: बस ट्रक, फोकलिफ्ट,
14: टैक्सी लाइसेंस,
12: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
13: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
12: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
13: 33 वेटले लैंड, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
12: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
13: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर।
5: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटर ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Miller CIC presents DeciFest Sheffield Miller 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Miller shopping featuring live performances from Lambler 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with Funfair.

0: हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
1: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
0: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
1: 30 वेटली हिल ब्राडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
0: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
2: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
1: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
0: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
0: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
3: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
4: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
5: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
8: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.

الرحمن أيما تدعوه فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
10: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
11: बालियां, अंगूठियां और हार,
10: जो दुल्हन करे सिंगार,
11: आज ही मामू काके की दुकान,
10: खालिस सोने की पहचान,
11: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
11: आपकी शान
10: हमारी आन,
11: क्वालिटी की पहचान।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
12: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
11: सोफी ज्वेलर्स?
12: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
11: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
13: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
14: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
15: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
14: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, ऑन ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: यू आर लिसनिंग टू Bradford Asian Radio on 1413 AM.

रूद पढ़ती हुई बाखबर गई खुशबू, नजर जो आया मदीना उतर गई खुशबू। ख्याल था कि न जाने कहां से आए हुजूर, राहे हबीबे खुदा में बिखर गई खुशबू।

बात करूंगा अदब से हुदूद के अंदर के खुदा का दीन है सारा दुरूद के अंदर नबी का नाम आते ही अंगूठे चूम लेता हूँ के इश्क़े रसूल शामिल है मेरे वजूद के अंदर।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
1: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
2: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
0: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
2: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
2: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
0: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
3: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स,
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
10: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
11: बालियां, अंगूठियां और हार,
10: जो दुल्हन करे सिंगार,
11: आज ही मामू काके की दुकान,
10: खालिस सोने की पहचान,
11: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
11: आपकी शान
10: हमारी आन,
11: क्वालिटी की पहचान।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95VR, 01274491442।
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स।

0: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
1: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
0: सोफी ज्वेलर्स?
1: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम। लेडी स्टाफ
0: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD9 4QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
0: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
3: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
0: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
4: टैक्सी लाइसेंस,
0: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
3: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
0: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
3: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
0: UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
3: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
0: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 PM. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257।
6: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8J। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक।

0: जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड 3।
0: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
0: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
4: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
0: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
4: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
0: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
4: 07548419678।
0: एशियन वेडिंग्स UK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
5: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
10: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
11: बालियां, अंगूठियां और हार,
10: जो दुल्हन करे सिंगार,
11: आज ही मामू काके की दुकान,
10: खालिस सोने की पहचान,
11: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
11: आपकी शान
10: हमारी आन,
11: क्वालिटी की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274491442।
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
12: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
11: सोफी ज्वेलर्स?
12: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
11: सोफी ज्वेलर्स, 121 ओकलेन, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
13: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
14: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
15: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
14: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर।
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
7: Ya Rab, kalam ko harfe asar tak rasai de. Ya Rab, kalam ko harfe asar tak rasai de. जज्बे को नुतक, नुतक को शोला नवाई दे। दिल यूं ढले सुखन में के धड़कन सुनाई दे। नजरों से जो निहार है, नजरों से जो निहार है, वो आलम दिखाई दे। किश्ते सुखन को बारिश अनवार चाहिए। प्यासे हैं लफ्ज अबरे गोहर बार चाहिए। नात हम्द, अल्लाह ताला की हम्द और नबी पाक की नात, इन दोनों मौजूआत का संगम शायर ने पेश किया। इस तरह वो कहता है, अल्लाह ताला की हम्द और नबी पाक की नात, उसने मुश्तरका मजमून बयान किया। कहता है कि खुदा को मालिक यौमुल हिसाब कहते हैं, खुदा को मालिक यौमुल हिसाब कहते हैं, मगर मगर बकौल रिसालत माब कहते हैं, मगर बकौल रिसालत माब कहते हैं, फरिश्ते दोज़ख और जन्नत हर एक है मौजूद। दलील ये है कि बस आ जनाब कहते हैं, दलील ये है मियां, दलील ये है कि बस आ जनाब कहते हैं, जिसे उन्होंने कहा है, जिसे

पार में अल्लाह सबके अस्तगफार में अल्लाह यानी कुल संसार में अल्लाह अल्लाह ताला की हम्द अल्लाह ताला की हम्द हम्द अल्लाह की हम्द शाह ने मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरकीब इख्तियार की ना अल्लाह ताला की हम्द बयान करने के लिए इसी बहर में जरा सी तरकीब बदली उसने कवाफी की तरकीब बदली उसने कहता है कि बाहिर अल्लाह घर में अल्लाह बाहिर

फिर बदली, तर शाह ने फिर तरकीब बदली। अब उसने जो गिरा पेश की ना, वो हुजूर के घराने की नजर की। अल्लाह ताला की हम्द हुजूर के घराने की नजर करता है शाह। उसने कहा कि काबे की तामीर में अल्लाह, काबे की तामीर में, कुरान की तफसीर में अल्लाह है।

0: अल्लाह ताला के हम किए अशार मैंने पेश करने की सादत हासिल की और अब मुझे पढ़नी है नात।
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
8: सुनिए जैसा भाभी ने कहा, फरीद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द

0: चाहिए, नंबर मिलाइए 07414260078।
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रून्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट। जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। महमूद रिज़वी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिज़वी,
4: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
6: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
11: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
10: सोफी ज्वेलर्स?
11: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
10: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
12: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
12: बस ट्रक, फोकलिफ्ट,
13: टैक्सी लाइसेंस,
12: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा, पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ राइडर।
12: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
12: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रेडफोर्ड, 9627222, 9627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: यू आर लिसनिंग टू
7: Bedford Asian Radio on 14:13 AM.
8: सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामाते आहो फगां और भी हैं। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स,
9: घर से जाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को

0: बोलने की जरूरत है, अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
2: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
8: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
9: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
8: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
9: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
8: फर्स्ट चॉइस
9: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
8: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
9: 01274317644
10: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
11: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
12: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
11: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
12: बालियां अंगूठियां और हार
11: जो दुल्हन करे सिंगार
12: आज ही मामू काके की दुकान
11: खालिस सोने की पहचान
12: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
11: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
12: आपकी शान
11: हमारी आन
12: क्वालिटी की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274491442
12: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
13: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
12: सोफी ज्वेलर्स
13: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
12: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
1: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
14: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
15: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
16: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
15: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274 414760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: यू आर लिसनिंग टू
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257।
6: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: on 1413 AM, DAB+, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
8: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
7: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644
9: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
10: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
10: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
11: बालियां अंगूठियां और हार
10: जो दुल्हन करे सिंगार
11: आज ही मामू काके की दुकान
10: खालिस सोने की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
11: आपकी शान
10: हमारी आन
11: क्वालिटी की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
13: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
14: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
13: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
14: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
13: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
14: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड 01274201679
13: saferaider.co.uk UK सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
14: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
13: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257।
6: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड

0: 13 a.m. DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
7: जो के पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
6: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 1-1 Oak Lane BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रेडफोर्ड, 9627229627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।

0: 14:13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 81-83 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07-885-428-349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स, ब्रेडफोर्ड, BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
6: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
9: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 वेटले लेन, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260 07848।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।

0: on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज। पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
9: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
9: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
3: Aag, kabhi kabhi, roshni, kahin kahin, shor, ronake.
12: Har cheez mein neha hai, har cheez se aaya hai. Har cheez mein neha hai, har cheez se aaya hai, sabse kareeb tar hai, sabse ajeeb tar hai. Khurshid mein na aaye, par zarre mein samaye. Khaye piye na soye, bole hase na roye. Be aankh sabko dekhe, be kaan sabki sun le. Be haath paon sab kaam karta hai wo, ba aaram. Mumkin nahi kisi se, tareef uski likhe. Tauseef us khuda ki, kya likhe mushtakha ki. Mazkoor jalwaye zaat, chhota samu, badi baat. Bas kar ke tere bas ka, rashid nahi ye kissa. Har cheez mein neha hai, har cheez se aaya hai. Sabse kareeb tar hai, sabse ajalwaye zaat, chhota samu, badi baat. Bas kar ke tere bas ka, rashid nahi ye kissa. Har cheez mein neha hai, har cheez

इकराम क्या होता है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि जो अल्ताफ फातिमा का शोहर आफाक नॉवेल है दस्तक न दो, अदबी इनाम याफ्ता नॉवेल है ये, और इसका बहुत सी जबानों में तर्जुमा भी हो चुका है। और आपको ये भी बताते चलें कि इस पे ड्रामे भी बन चुके हैं, इतना ये अहम इसका प्लॉट, इसकी कहानी कह लीजिए कि बहुत अहम है। और ये एक बच्ची की, एक लड़की की कहानी है, इसका जो प्लॉट है, जो मरकजी किरदार है वो एक बच्ची का है, किस तरह से वो बच्ची बदलते हैं लोग, किस तरह से जो जिंदगी के हालात, जिंदगी के वाकयात जो पेश आते हैं इंसान के साथ, किस तरह उसकी जिंदगी में जो तब्दीलियां आती हैं कुदरत की तरफ से, तो इंसान के अंदर बहुत सी ऐसी छुपी हुई पोशीदा सलाहियतें होती हैं जिनको बाद में इंसान को इल्म भी नहीं होता कि उसके अंदर ये काबिलियत, ये सलाहियत पोशीदा है, वो फिर बाहर निकल के आती है कि जब हालात के मुताबिक इंसान अपने आप को ढालता है। एक अकलमंद शख्स सवीन कराम वही होता है, एक जिसे दाना कहिए, दानिशमंद कहिए, कि जो हालात के मुताबिक अपने आप को थोड़ा बहुत तब्दील करता है, चेंजेस लेके आता है, अच्छी वाली चेंजेस लेके आता है। तो ये कहानी उस बच्ची की कहानी है, दस्तक ना दो एक पैगाम भी है इसमें अंदर। अगर आप इस सिलसिले को मुसलसल सुनेंगे, बाकायदगी के साथ गौर से सुनेंगे, तो यकीनन आप इससे बहुत बहुत महसूस होंगे। ये हमारा वैसे जाती दावा है, बहरहाल गलत भी हो सकता है, वो तो फिर आप बताएंगे कितना सही और कितना गलत। तो इसके अलावा सामीने कराम हमने सिलसिला शुरू किया था किस बात का, हरूफ तहजी से चंद अल्फाज का जो जखीरा होता है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो उर्दू जबान है इतनी खूबसूरत लश्करी जबान, तो बाज़ोकात जब आप दूसरी जबानें साथ बोलते हैं तो फिर आपकी अपनी जबान थोड़ी पसे पुश चली जाती है, और कुछ बहुत से ऐसे अल्फाज आप जिनको जानते भी हैं, हालांकि आपको उनका मतलब भी मालूम होता है, उसके माने आपको पता होते हैं, उसके बावजूद बाज़ोकात आपके जहन से वो हट जाते हैं। तो कोशिश ये है छोटी सी अपनी सी कि हम अपने अल्फाज के जखीरे को जो है बढ़ाएं, उसमें इजाफा करें। आप लोग हमें बताते हैं, हमारे इल्म में इजाफा करते हैं, कुछ जो हमारा थोड़ा बहुत इल्म है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो हम एक हरूफ तहजी जो है उसके हवाले से, जिसे कहते हैं ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, तो हमने अलिफ मद्दा से शुरू किया गुज़िश्ता हफ्ते, उसके बाद बस कर नहीं पाए। तो बहरहाल आज के प्रोग्राम में अलिफ हमारा लफ्ज होगा हरूफ तहजी का, और उससे चंद खूबसूरत मखसूस अल्फाज जो आपको पसंद है। वैसे तो जाहिर है अलिफ से हजार हा, बल्कि हजार हा क्या, लाखों अल्फाज होंगे, लेकिन आप अपने चंद पसंदीदा अल्फाज हमें फोन कॉल करके बताएंगे, हम आपको चंद अल्फाज बताएंगे और फिर उनके माने भी हम कोशिश करेंगे कि आखिर में बताए जाए, ताकि सबके इल्म में इजाफा हो। और फिर हमने ये कहा था कि जी गुज़िश्ता हफ्ते हमें याद है कि क्या होगा कि इनाम निकालेंगे कुरानदाजी के जरिए, अब इनाम क्या होगा वो एक सरप्राइज हुआ करेगा अगर हमें ज्यादा कॉल्स मौसूल होती हैं इस हवाले से। गुज़िश्ता हफ्ते तो बस दो कॉल्स मौसूल हुई थी जहां तक हमें याद पड़ता है, नाहिद साहिबा थी और जनाब चौधरी रुखसार साहब, आप तशरीफ लाए थे इस सिलसिले के हवाले से। तो आज देखते हैं ज्यादा कॉल्स मौसूल हुई तो हम फिर कुरानदाजी का सिलसिला शुरू करेंगे और फिर उसके जरिए एक शख्स को इनाम भी दिया जाएगा। अब इनाम क्या है, जैसा कि हमने कहा सरप्राइज होगा, तो सरप्राइज तो तभी पता चलता है ना जब आप हमारे साथ साथ रहेंगे और हमें सुनेंगे। जी हाँ, तो सामीन कराम बाकी छोटी मोटी बातें जो हैं, जो नकात होंगे वो आते रहेंगे। आपको याद होगा कि हम पहले जब प्रोग्राम बहुत अरसा पहले किया करते थे तो हम टॉपिक्स रखा करते थे, और टॉपिक्स के ऊपर जो है लाइव कॉल्स ली जाती थी, आप लोग शामिल होते हैं लाइव कॉल्स में, आप लोग अपना नुक्ता नजर जो है उसको पेश करते हैं, बयान करते हैं, और फिर हम उसमें से कुछ जो अपने इल्म के मुताबिक, अपनी सोच बूझ और दानिश के मुताबिक उसमें से फिर निकालते हैं कि क्या क्रस्ट निकला, क्या उसका नतीजा निकलता है उस मौजू के हवाले से। मौजूद क्या होते हैं, सोशल इशू, जो समाजी मामलात होते हैं ना उनके हवाले से। लेकिन फिर हमने ये समझा, ये सोचा, बगौर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कॉल्स इतनी नहीं होती हैं कि बहुत ज्यादा लोगों का नुक्ता नजर पहुंचा जाए, इसलिए हमने उस सिलसिले को मौकूफ कर दिया और फिलहाल हम इसे मौकूफ ही रखेंगे जब तक कि हम समझते हैं कि हमारे बहुत से कॉलर्स प्रोग्राम में शामिल हों, हमारे साथ रहें, हमें बताएं कि आप सुन रहे हैं, फिर आपका नुक्ता नजर हम सुने और आगे पहुंचाएं।
लाइव कॉल्स आपके लेके आगे पहुंचा सकते हैं हम, लेकिन वो अभी जरा हम समझते हैं थोड़ा बात का सिलसिला है, फिलहाल उस सिलसिले को हम जारी नहीं करेंगे। तो चलिए अब प्रोग्राम का पहला गीत जो है खूबसूरत सा आप तमाम सुनने वालों के नाम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप इसे पसंद करेंगे और आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, कोई भी गीत सुनना चाहते हैं डेडिकेशन के तौर पर या फरमाइश, वो आप बता सकते हैं 01274306677 के जरिए। जी हाँ, आपसे मुखातिब है आपकी मेजबान उस्मा अशफाक, प्रोग्राम इंतखाब के हमरा। लीजिए इस गीत को सुनिएगा।

0: जी समीन, अगर हम आपने खूबसूरत सा गीत सुना, उम्मीद तो करते हैं कि पसंद किया होगा। प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह। जी हाँ, समीन कराम भी हमारे समझ गए होंगे सबसे पहले कौन तशरीफ लाएं। जी पहले एक और तशरीफ लाए, लेकिन समीना साहिबा बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश हमेशा की तरह प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और जिस गीत की आपने फरमाइश की, आप जहन में आधा आधा आ रहा है, कभी हम माजर चाहेंगे समीरा साहिबा, अगर प्लीज आप दोबारा फोन करके, वो एक्चुअली बातों बातों में हम आपका गीत भूल ही गए, और अभी जाहिर है क्यों तो किया नहीं था आपसे बात के बाद, गीत ये वाला खत्म हो गया पहला, तो बहुत माजर चाहेंगे। गुजारिश है कि लता का गीत आपने कहा, ये हमें याद है, कभी हम तुम दूर थे या करीब थे, कुछ इस तरह से गीत था, तो हम लगा अभी ढूंढ के लगाते तो हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन अगर गलत हुआ तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा शामिल होके हमें तस्सीह कर दीजिएगा। और अफजाल साहब, आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। प्रोग्राम आपने कहा कि जी आप सुनेंगे जरूर, पूरे का पूरा साथ साथ रहेंगे, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। तबीयत का पूछने के लिए भी बहुत आपका शुक्रिया। तो लीजिए फिलहाल समीना कराम, ये खूबसूरत सा गीत सुनिएगा, और समीना साहिबा हम आपका गीत ढूंढ के इस गीत के बाद वो लगाते हैं, अगर तो वो वही हुआ वेल एंड गुड, फिंगर क्रॉस्ड, और अगर वो गीत वो नहीं हुआ तो आपसे गुजारिश है कि आप दोबारा कॉल कीजिएगा और प्लीज हमें बता दीजिएगा। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, आप आए बाहर आई
1: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? आप तो वैसे ही लगेंगी मलिका तिल फरेब।
2: किस

0: सामी ने कहा एक नया सा गीत सुना, लगता पुराना सा है लेकिन है बहुत नया सा, बहुत अच्छा खूबसूरत सा गीत था। उम्मीद करते हैं कि आपने पसंद किया होगा। और एक बार फिर, एक मर्तबा फिर क्या करें, शुक्रिया अदा करना पड़ता है, शुक्रिया बनता भी है। समीरा साहिबा, आप उन चंद मादूदे लोगों में से हैं जो हकीकतन, ये हम दिल से बात कर रहे हैं जितना हम आपको जानते हैं, कि जो लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, मुश्किलात नहीं पैदा करते बल्कि आसानियां पैदा करते हैं। और ये बड़ी बहुत ही सादत की बात होती है, बड़ी खुशकिस्मती होती है। दूसरों की तो होती ही होती है लेकिन उस शख्स की बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है, ये हकीकत है, कि जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करे, क्योंकि वो जाने अनजाने दूसरों की दुआएं दे रहे होते हैं। दूसरे लोग उनके बारे में अच्छा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। एक तो होता है ना कि जी हाँ, आपकी मर्जी है, आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए बारे में आप बुरा सोचते हैं, किसी के बारे में आपके मिले जुले तासुरात ख्यालात होते हैं कि हाँ जी बस ठीक है, फलां बहुत अच्छा है, फलां ठीक है, फलां शख्स जो है उसमें ये खूबी है, ये खामी है। क्योंकि हर शख्स जो है खूबियों और खामियों का मुरक्का है, कोई शख्स भी मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल ज़ात किसकी है, सब जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस ज़ाते बाबरकात, उस अल्लाह ताला की, जिसने हम सबको पैदा किया, जो हमारा परवरदिगार है, जो हमारे पालने वाला है, हमारा खालिक है, मालिक है। तो उसके अलावा हर शख्स जो है उसमें खूबियां और खामियां मिली जुली होती हैं। तो वो तो अपनी जगह, लेकिन एक अच्छा शख्स कौन हो सकता है, किसे कह सकते हैं जिसमें खामियां कम हो और खूबियां ज्यादा हो। जाहिर है वही शख्स अच्छा कहलाता है। और सबसे बढ़ के अच्छा शख्स क्या, कि जो न सिर्फ जो अपना भला सोचता है, अपने लिए अच्छी चीजें करता है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा करता है, दूसरों के लिए अच्छाइयां ढूंढता है। तो आप हकीकतन चंद उन लोगों में से हैं। समीरा साहिबा, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, हम तो बिल्कुल भूल गए थे, लेकिन आपने फिर दोबारा प्रोग्राम में शिरकत की, आपने वो गीत, बल्कि सच बात यह है बहुत मजा आ रहा था गुनगुना के, आपने हमें सुनाया कि जी ये वाला गीत है, तो हम तो चाहते थे कि आपको ऑन एयर ले जाएं, ताकि हमारे जो दीगर सामीने कराम हैं वो भी आपकी खूबसूरत आवाज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो। लेकिन चलिए, बहरहाल उसका भी कभी सिलसिला शुरू करेंगे, ज़रूर लेके जाएंगे। तो अब जो गीत की आपने फरमाइश की, हम वो लगाएंगे नहीं, पहले ब्रेक।
1: मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk। दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, PD9 5ER 01274491442,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, BD9 4QU 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
1: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर। रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मौजूद सामने कराम, आप समाज फरमा रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात 1413 AM पे ऑनलाइन। साथ ही साथ ये नशियात आप सुन रहे हैं अपने स्मार्टफोन के जरिए भी, और आपसे मुखातिब है आपकी मेजबान उस्मा अशफाक। जी हाँ समीना साहिबा, आपका गीत बिल्कुल आ रहा है, क्यों हो चुका है, कमर्शियल ब्रेक आ रही थी, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि आप कटाफटा गीत सुने, मुकम्मल गीत को आप इंजॉय कीजिएगा। आपके लिए इस गीत को हम पेश करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ अजरा साहिबा, आप प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी नवाजिश, तहे दिल से आपके भी मशकूर और ममनून। गीत सुनना चाहती हैं अपनी तमाम दोस्तों के लिए, अपने गुलदस्ते के लिए, तो फिलहाल अजरा साहिबा इस खूबसूरत से गीत को सुनिएगा जो समीरा साहिबा की फरमाइश है, और उसके बाद हम आपके लिए अच्छा सा गीत पेश करेंगे। तो लीजिए समीरा साहिबा, अब ज्यादा देर किए बगैर पहले आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, और उसके बाद एक अमजद इस्लाम अमजद की खूबसूरत सी नज्म हम आपके गोश गुजार करेंगे।

जी समीरा साहिबा, आपने अपनी फरमाइश का गीत सुन लिया, यकीनन आपने बहुत एंजॉय किया होगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमने पहले ये गीत वैसे नहीं सुन रखा था, आज आपकी बदौलत हमने भी ये गीत सुन लिया और बड़ा मीठा सुरीला खूबसूरत सा गीत है। बहुत शुक्रिया आपका। और अज़रा साहिबा, अब ये आने वाला जो गीत होगा ये आपके लिए होगा, आपके साथ साथ जो आपका गुलदस्ता है दोस्तों का उन सबके लिए होगा। और साथ ही साथ हमें फोन किया हमेशा की तरह जनाब चौधरी रुखसार साहब, आपने मैनचेस्टर से बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अभी बात हो रही थी ना लोगों की खूबियों की और खामियों की, तो हम ये समझते हैं कि एक और बहुत बड़ी हमारे नजदीक खूबी जो है किसी भी शख्स की, वो मर्द है वो औरत है जो भी शख्स है, अगर वो वफादार नहीं है, अगर वो लॉयल नहीं है, तो यानी वो थोड़ा सी कमी जिसे कहते हैं ना वो शख्सियत में रह जाती है। तो कुछ लोग बड़े वफादार होते हैं, कुछ लोग बहुत लॉयल होते हैं, बगैर किसी गरज के, बगैर किसी लालच के, बिना किसी मतलब कोई उन्हें कोई काम नहीं होता किसी से, लेकिन वो अपनी वफादारी जो है हमेशा उसे निभाते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं, वफादारी की कीमत चुकाना पड़ती है अक्सर, ये दुनिया का दस्तूर कह लीजिए, ये है दुनियादारी है इसमें जो भी है। लेकिन बहरहाल, तो बात हमने क्यों की, बात इसलिए ये की कि जनाब जो है हमारे चौधरी रुखसार साहब, आप में वफादारी बहुत है, जितना हम आपको जानते हैं, जितना हम आपको समझते हैं, जितनी हमें हमारी आपसे बातचीत होती है ना, उस हवाले से बात कर रहे हैं। हम पहले भी यही कहते हैं कि जो रेडियो का रिश्ता होता है ना सामे का, और ये जो प्रेजेंटर होते हैं यहाँ पे पेशकार, उनका आवाज का रिश्ता होता है। एक आप फोन पे आपसे बातचीत हो जाती है, आप हमारी बातें सुनते हैं रेडियो के जरिए, हम आपकी बात सुनते हैं फोन टेलीफोन के जरिए, या कभी कभार कोई खत लिखते, पहले तो लिखा करते थे लोग, या ईमेल कर देते हैं उसके जरिए पता चल जाता है, तो इंसान अपनी बातों से पहचाना जाता था। अभी चौधरी रुखसार साहब आपने यही बात कही इल्म और अमल की, तो बिल्कुल सही बात है, इल्म और अमल दोनों चीजें थोड़ी बहुत मुख्तलिफ है। इल्म होता है जानना किसी चीज का, और फिर अमल ये क्या है कि जब तक आप उस पर अमल नहीं करते, जब आप उस पर एक्ट अपॉन नहीं करते, उसको अपनी ज़ाती जिंदगी में अमली तौर पर उस पर काम नहीं करते, तो वो बस इल्म ही रहता है, वो अमल नहीं बनता है। यानी अमल नहीं बनता तो इसका मतलब है आप एक किरदार का हिस्सा नहीं बन सका वो चीज, वो या बन सकी वो चीज। तो बहुत शुक्रिया चौधरी रुखसार साहब। बात यह है कि हम चाहते हैं कि जैसे आप लोग हमारी इतनी तारीफ और तौसीफ करते हैं, माशाल्लाह से इतने अलकाबात से आप नवाजते हैं, यकीन कीजिए खासतौर पर आपकी फोन कॉल से तो हम वैसे ही शर्मिंदा हो जाते हैं, इतने इतने अलकाबात आप उससे नवाजते हैं कि इंसान सोचता रह जाता है कि आया आप में ये खूबियां हैं या नहीं है, बाद में सोचना पड़ता है, हकीकतन ये बात है। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको भी इज्जत दे, अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। चौधरी रुखसार साहब खूबसूरत सा गीत आपके लिए पेश करेंगे, और अभी आप सोच के फिर बताइएगा कि अलिफ से कौन से अल्फाज आप हमें देंगे। तो जो अज़रा साहिबा है, अज़रा साहिबा बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आप शामिल हुई थी, आप बहुत सच्ची बहुत ऑनेस्ट जितना हम जानते हैं। देखिए आप ये ना आज समझिएगा कि आज हम लोगों की तारीफ और तौसीफ में लगे हुए हैं, बात यह है कि लोग खराबियां तो बहुत तलाश करते हैं, बयान भी करते हैं, लेकिन लोगों की जो खूबियां होती हैं ना, उनकी जो सिफात होती हैं, वो बहुत कम लोग बयान करते हैं। बड़ा कम ऐसा मौका भी होता है कि लोग एक दूसरे की तारीफ करें, ये थोड़ा कम होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगियों से। तो हम ये चाहते हैं, और ये हमें अभी चौधरी रुखसार साहब हम आपको क्रेडिट देंगे इस बात का कि आप जब इतनी तारीफ और तौसीफ करते हैं, जब आप इतने अलकाबात देते हैं, इतनी इज्जत अफजाई का फरमाते हैं आप, तो फिर इंसान सोचता है कि जाहिर है जब अगर एक शख्स आपकी इतनी कर सकता है तो आपको भी दूसरे लोगों की इज्जत अफजाई करनी चाहिए, आपको भी दूसरों की खूबियों का तस्करा करना चाहिए। खुशी मिलती है इंसान को, इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, इंसान अपने आप को अच्छा महसूस करता है, ना सिर्फ सुनने वाला बल्कि जो बात करने वाला होता है ना वो भी बहुत अच्छा महसूस करता है। अब देखिए, हालांकि हमारी तबीयत मुकम्मल तौर पर तो 100% दुरुस्त नहीं हुई, बहाल नहीं हुई, लेकिन आप लोगों की फोन कॉल्स, आप लोगों का हौसला अफजाई, आपके अच्छे अल्फाज इंसान में एक हिम्मत, एक ताकत, एक एनर्जी दे देते हैं आपको, आपको जीने की जिसे कहते हैं ना एक वजह मिल जाती है, प्रोग्राम करने की वजह मिल जाती है कि आप यहां ऐसे अकेले हवा में बैठ के बात नहीं कर रहे, वहां पे लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, जो आपकी बात को पसंद कर रहे हैं,
پھر وہ آپ کو فیڈ بیک دیتے ہیں, پھر وہ آپ سے بات کرتے ہیں, وہ اپنی بات آپ تک پہنچاتے ہیں, تو یہ بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں. تو عذرا صاحبہ, آپ جیسا آنیسٹ, آپ جیسا حوصلہ مند بہت کم لوگ ہوتے ہیں, بہت کم لوگ ہوتے ہیں. سچے دل کے اچھے, جیسے کہتے ہیں نا ہارٹ آف گولڈ رکھنے والی جو شخصیات ہوتی ہیں, وہ بھی یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے سمینے کرام کہ آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں, آپ کے ایسے لوگوں سے تعلقات ہیں, وہ آپ کی زندگی میں ہیں, کیونکہ آپ ان کی زندگیوں سے بہت کچھ پھر سیکھتے ہیں. تو یہ خوبصورت سی نظم پڑھنے ہم جا رہے ہیں, اور یہ نظم ہم نام کریں گے سمیرہ صاحبہ, عذرا صاحبہ اور چودھری رخسار صاحب آپ کے, اور افضال صاحب ہم بھول نہیں رہے, آپ نے بھی شرکت کی تھی پروگرام میں, آپ کے نام بھی کریں گے. بے سکونی ہوا کی فطرت ہے, بے سکونی ہوا کی فطرت ہے, پانیوں کا نصیب بہنا ہے, ایک بے نام سے اشارے تک وقت میں یوں ہی چلتے رہنا ہے. جانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے, جانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے, پھر بھی کیا کیا خیال آتے ہیں, ذہن میں گونجتے ہیں سناٹے, ریت کیوں ہاتھ میں نہیں آتی, کیوں زمین کروٹیں بدلتی ہے, بستیاں رونتے ہیں کیوں, دریا برق کیوں خلوتوں پہ گرتی ہے, مالک دو جہاں میرے معبود, مالک دو جہاں میرے معبود, آدمی شہر خواب تعبیریں, وہ جو ایک پل میں ہو گئی نابود, تیری تخلیق تھی وہ تصویریں, سب زمینوں پہ سب مکانوں پر, لوگ کہتے ہیں یہ حقیقت تھی, اس جگہ بولنے کا یارہ نہیں, صرف توفیق صبر کی مانگو, ماں سوا اس کے کوئی چارہ نہیں, آزمائش پہ صبر واجب تھا, سو اسے اختیار ہم نے کیا, سوچنا یہ ہے اب کے دیدہ ورو, اس پہ کیا کیا خیال ہم نے کیا, حادثہ جس قدر بھی سنگین ہو بیت جائے تو بھول جاتا ہے, حادثہ جس قدر بھی سنگین ہو بیت جائے تو بھول جاتا ہے, دیکھنا یہ ہے آدمی اس سے کیسے اور کتنا سیکھ پاتا ہے.

जमीन गरम आपने खूबसूरत सा गीत सुना और यकीनन पसंद किया होगा। जी हाँ, क्यों पसंद किया होगा सुमिरा साहब, आपने बताया कि ये आपका भी पसंदीदा गीत था, तो चलिए अच्छी बात है कि आपको भी पसंद आया ये गीत। और अब जो आने वाला गीत है, किसके नाम हम करेंगे, जी हाँ, इस गीत को देखते हैं, लीजिए सुनिएगा।

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट। जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड 424453। महमूद रिजवी।
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
3: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
13: موجود سامعین کرام, اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ. یہی نشریات پہنچ رہی ہیں آن لائن آپ کے پاس www.bradfordasianradio.co.uk کے ذریعے, اور ساتھ ہی ساتھ ڈیب کے ذریعے بھی چند اضلاع تک, چند شہروں تک ہماری نشریات پہنچ پاتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے فون پر ہمارے فری آف کاسٹ اسمارٹ ایپ جو ہے اس کے ذریعے ہماری نشریات کو سن سکتے ہیں, لطف اندوز ہو سکتے ہیں. آپ سے مخاطب ہے آپ سے آپ کی میزبان عثمہ اشفاق, پروگرام انتخاب کے ہمراہ. جی ہاں, آج خاص الخاص ایک اور بہت میسج آیا, ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. اس سے پہلے بتاتے چلیں, زرکا صاحبہ بہت شکریہ, بڑی نوازش, آپ کی بھی پیاری سی آواز سنی, بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت تندرستی والی زندگی عطا کرے. آپ کی دعاؤں, آپ کے خلوص کا بہت شکریہ, بہت نوازش. ہم پہلے بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ جیسے سامعین کرام ہیں جو انرجی دے دیتے ہیں, جو ہمت طاقت دے دیتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے آپ کی دعائیں ہیں, نامعلوم اللہ تعالیٰ کس کے اٹھے ہاتھ کی دعا سن لیتا ہے, قبول کر لیتا ہے. اور الحمدللہ پہلے سے ہماری طبیعت بہت بہت بہتر ہے, تبھی دیکھیے نا آج یہاں پر موجود ہیں. کل نہیں آ پائے تھے کیونکہ طبیعت اجازت نہیں دے رہی تھی, لیکن آج الحمدللہ اس قابل تھے کہ ہم آ کے آپ کی خدمت میں آپ لوگوں کے لیے پروگرام پیش کریں. ایک اور جو میسج ہم نے بتایا آپ کو, بہت خاص الخاص میسج ہے, جی ہاں, وہ کس کی طرف سے ہے؟ ہمارے بہت پرانے لسنر, ہمارے بہت پرانے ساتھی, جی ہاں, جناب طارق بٹ صاحب ڈیوزبری سے. طارق بٹ صاحب آپ کی بات ہو رہی ہے, بہت ہے, جی ہاں, وہ

जी हाँ सामी ने कराम, जिंदगी खूबसूरत है जैसी भी है। कुछ लोग कहते हैं जी ये क्या जिंदगी है, गमों से दुखों से भरी हुई और तकालीफ से का सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है जिंदगी, मुश्किल है आसान है। सामी ने कराम जैसी भी है इस गीत में यही सबक था और ये बड़ा सच्चा और सही सबक है, गलत नहीं है। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, खुद अपने अंदर ये बड़ी खूबसूरत है। अच्छा जी, अब इस खूबसूरती को मजीद बढ़ाते हैं, जिंदगी की खूबसूरती को, और बताते चलें। जी हाँ चौधरी रुखसार साहब, तहे दिल से आपके मशकूर व ममनून, इतना आप वक्त निकालते हैं, आप बीच में से ब्रेक के दौरान फोन करते हैं, आप शामिल रहते हैं, आप साथ साथ रहते हैं प्रोग्राम में। आपने अलिफ के साथ शुरू होने वाले चंद अल्फाज भी बताए जो कि हम उस सिलसिले में अभी दोहराएंगे। उससे पहले इस वक्त हम बताते चलें कि अल्ताफ फातिमा का नॉवल दस्तक ना दो, उसका दूसरा हिस्सा आपके लिए सामीन कराम पेश हम कर रहे हैं, और वो तीसरा बाब है ये। पहला और दूसरा बाब हमने पढ़ के सुनाया था गुज़िश्ता प्रोग्राम में, आज ये तीसरा बाब है। अब वो क्या लिखती हैं, लिखती हैं उस शहर का क्या नाम था और उसकी क्या अहमियत थी जिसकी बाज़ कुशारा सड़कें वो नापता फिरता था। उसको इससे कोई सरोकार न था, उसका कोई भी नाम हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये और इस नौयत का कोई भी शहर उसका अपना शहर नहीं हो सकता था। उसकी हर चीज उसके लिए नामानूस और अजनबी थी। वो इतनी बहुत सी अजनबी चीजों में घिरा हुआ था कि उनका शुमार भी नहीं कर सकता था, लेकिन उसको खूब मालूम था कि खुदा की इस तवील अरीज जमीन में बड़े बड़े शहर हैं, यहां तक कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास भी मौजूद है, और हां कराची भी तो है, वहां ही तो वो आकर उतरा था। चीनियों के मोहल्ले में आकर उसको सकून सा मालूम हुआ था, चिपटे चेहरे, तिकोनी आंखें और बैठी बैठी नाकें, पस्त कद, फरबही की तरफ मायल घटी घटी औरतें, चीनी मांस में खामोशी और मतानत से खटखट चलती हुई और फिर तंग तंग से फ्लैटों के बावर्ची खानों से मछली, झींगों और लहसुन की रोटी की खुशबुएं आती हुई। और वहां तो सब कुछ था, बहुत बड़ा चीनी रेस्टोरेंट जिसके खानों की फहरिस्त में इतने नाम थे कि उसने चीन में रहकर भी न सुने थे। अरे वहां आम लोगों को कब इतने अच्छे खाने मयसर आते हैं, वो हमेशा कनात से सोचा करता था। ये तो भाई इस तवील अरीज मुल्क के लोगों का ही हिस्सा है, फिर भी उनमें से ज्यादातर के चेहरों पर 12 ही बजे रहते हैं, वो जलकर हकारत से मुंह बनाता। खैर जो कुछ भी हुआ, कराची अच्छा शहर था, मगर उस कमबख्त सांग ने उसको वहां रहने ही कब दिया। 6 माह भी ना गुजरे थे कि वो इसको वहां से ले उड़ा। हाँ ठीक है कि वो उसे मुलाजिम ही रखकर लाया था, पर वो उसको किसी बहुत बड़े शहर में क्यों ना ले गया, कराची जैसे बड़े शहर में जहां चीनियों के मोहल्ले होते हैं और आदमी को इतनी ज्यादा अजनबियत का एहसास नहीं होता। मगर खैर शाम को तो यही मुख्तसर से शहर पसंद आया था जहां सिरे से कोई दूसरा चीनी मौजूद ही न था। वो रात को उसकी जूते बनाने वाली मशीन पर काम करता था, हफ्ते में 4 रोज जूते की दुकान पर सेल्समैन का काम करता और 2 दिन साइकिल पर अपनी चीनी दस्तकारी के बेमिसाल नमूने लेकर सिविल लाइन के अलावा मकामी रईसों की कोठरियों के चक्कर काटता। चाइनामैन, चाइनामैन, वो बड़ी मस्खरी से मोटी और महीन आवाजें निकालता हुआ बंगलों और कोठियों के अहातों में अपनी साइकिल ले जाकर घुस जाता। घंटों बरामदों की सीढ़ियों और पोर्च की दीवारों से टेक लगाए खड़ा पतलून के पांचे लपेट लपेट कर उन पर सफेद स्लो लाइट का क्लिप चबाया करता और अंदर से बेगमों को छांकते देख कर संभल कर मुअद्दब लहजे में दोहराता, चाइनामैन। जरा से इशारे पर वो अपना भारी भरकम गट्ठर धम से बरामदे के चमकते हुए फर्श पर पटक देता और खुद उसके साथ टेक लगाकर बैठ जाता, और जब नफासत के साथ नाक भू चढ़ाती हुई बेगमें बरामदे में पड़े हुए मूंढों पर आकर बैठ जाती तो वो अपना गट्ठर खोलकर चीनी दस्तकारी के बेबहा नमूने उनके कदमों में बिखेर देता। पलंग पोश सिल्क के नाइट सूट और ड्रेसिंग गाउन, मेज पोश, टिकोजियां, सामान क्या होता, फाइन आर्ट्स की एक नुमाइश होती। दिल ही दिल में इस सनत
और दस्तकारी की कायल होते हुए भी वो उसे कहती, हटाओ, क्या दिखा रहे हो, बेकार है ये पलंग पोश। इस सेट में क्या रखा है जो उसके 10 रुपए मांग रहे हो?

0: माँ से चाहेंगे समीम, थोड़ा सा गला जो है ना बाजू का साथ नहीं दे पाता। बहरहाल आगे चलते हैं। तो वो जो खवा थी, जो बेगमा थी, जब वो सब कुछ ये देखती थी, लेकिन क्या है कि कहाँ पहुंचे थे हम? जी हाँ, वो इससे दाम करने को कहती और अपनी छोटी छोटी तिरछी आंखें झपका झपका कर पैसे पैसे के लिए वो उनसे झगड़ता। वो झगड़ता तो सही, लेकिन उसकी आंखें और लब मुस्कुराते रहते। वो बड़ी खुशमिजाजी से उनकी हर बात का जवाब दिए जाता। लो भला, इसकी कोजी के 3 रुपए मैं हरगिज ना दूंगी। ऐसी क्या बात है इसमें? मत दो, मत दो, एक भी मत दो, वो आंखें सुखेड़ लेता। मगर उसमें बहुत बहुत बकत हमारा औरत लोगों को बहुत आ आ उससे बनाता है। मेहनत का लफ्ज उसको याद ना आता और वो मस्खरों की तरह हाथ हिलाता। क्या मेहनत लगता है? कुछ नहीं, जरा देर का काम है। आ बेगम साहब, दूसरे का काम देर का मालूम होता। वो उनको धमकाने के ख्याल से चीजें लपेट लपेट कर और बांध बांध कर रखना शुरू कर देता, और जब उनको मतवज्जो ना देखता तो एकदम एक आध रुपया कम करके पूछता, इतने को लेगा? झक झक तो खूब होती, मगर कोठियों में माल बिकता जरूर। और जब वो अपना गट्ठर दोबारा साइकिल पर लाता तो ये सोचकर उसका दिल कुढ़ कर रह जाता कि ये बेगम लोग उसकी चीजों को मामूली और निकम्मा बनाती हैं। उनको क्या मालूम ये चीजें उनके नजदीक कितनी प्यारी और बेबाहा हैं। ये उसके मुल्क की फाकाकश औरत की दस्तकारी हैं, जिनको सख्त मेहनत और दीदारेजी के बाद भी शिकम सेरी नसीब नहीं होती। कपड़े और रेशम से बनाए हुए इन शगुफों, पुलों, दरियाओं, कश्तियों और माबदों से उसको कितना जज्बाती लगाव है वो क्या जाने। वो जब इन सब चीजों को बिखेर कर उनके दरमियान बैठता तो उसको महसूस होता कि कदीम और महजब चीन का सारा माहौल, कल्चर और तारीख उसके इर्द गिर्द बिखरी हुई है, और खुद वो उन सब के दरमियान मुकद्दस बुत की हैसियत रखता है। ये भी एक बहुत सर्द दिन का ही वाकया है। उस दिन सुबह ही से सांग उस पर नाराज था। वो दुकान के अगली हिस्से में बैठा हुआ चमड़ा काटने वाली मशीन पर काम कर रहा था और सांग के फसीहते भी खामोशी से सुन रहा था। इन 2 हफ्तों में उसने, जो उर्फे आम में सफदर यासीन के नाम से मशहूर था, फेरी के सिलसिले में सांग को एक पैसा भी लाकर न दिया था। फिर सांग को गुस्सा क्यों ना आता? इस हराम खोरी के क्या माने? वो एक छोटी और नीची सी चौकी पर गौतम बुद्ध के स्टाइल में आसन जमाए बैठा था। उसका पस्त कद, फरबा जिस्म साटन के स्याह चुगे में छुपा हुआ था, जिसके दाहिनी तरफ एक कदीम दास्ताने इश्क कड़ी हुई थी। और इस मंजर में बैदे मजनू के नीचे नेंगताई अपने हम मकतब शान पूसे रुखसत होती दिखाई गई थी। सांग का मोटा और सुखी माइल थलथला जिस्म हिल रहा था। उसका पेट लटके हुए सीने के गोश्त के दरमियान एक मुदव्वर टीले की तरह नुमाया और उभरा हुआ था। सीधी और सियाह मूछे केकड़े के डंगों की तरह थोड़ी के दोनों तरफ बेबसी से लटक रही थी। सांग की सारी बकझक का मतलब यही निकलता था कि वो बड़ा निकम्मा और कामचोर है, बंगलों पर जाने से घबराता है। वरना क्या जुर्म है जो उसका सामान न खरीदा जाए? फजूल बातों से तो फुर्सत नहीं इसको। सांग को दरअसल सारा रोना इसी बात का था कि जरा आंख बची और खाली वक्त में सफदर का बुर्श चलने लगा। सिल्क के टुकड़ों, सफेद बांस की पत्ती पत्ती चिलमनों पर और कुछ नहीं तो चावल के रंग बरंग आटे को गूंद गूंद कर उसकी चीजें बनाने बिगाड़ने में सफदर का सारा वक्त जाया होता था। हालांकि ये मशगले रात गए से पहले कभी भी शुरू ना हो सकते थे। इस माह के बाद तुम्हारा हिसाब कर दूंगा, फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। वो तकरीबन हर माह के वस्त में यही धमकी देता, हालांकि हिसाब किताब करने का ख्याल दूर दूर तक ना होता। सफदर जैसा लावारिस और मेहनती लड़का और उस पर बेउजरी और घुन्नापन, कुछ कह लो मजाल है जो मुंह से जवाब निकल जाए। सबसे बड़ा फायदा यह था कि वो जरा देर में सांग के बही खातों का हिसाब किताब ठीक कर दिया करता था, जिसमें सांग तकरीबन कोरा था। اور یہ سارے کام ایک معمولی سے مشاہرے کے عوض خوشی خوشی یوں کر دیتا تھا کہ سانگ نے اس کے کھانے پینے کا انتظام اپنے ذمہ لے لیا تھا. ہر دوپہر کو سانگ کی خاموش تباہ بے اولاد بیوی نیچی سی چوکی نما میز پر پیالہ بھرے ہوئے چاول, جھینگوں کا شوربہ, مچھلی یا بانس کے کلوں کا شوربہ اس کے سامنے رکھ دیا کرتی تھی, اور جب وہ چکنی اور سفید تیلیوں سے اڑا اڑا کر چاول کے لقمے منہ میں بھرتا تو وہ قریب بیٹھی بڑی توجہ سے اس کو کھاتے دیکھا کرتی اور سانگ کی نظر بچا کر پیالہ خالی ہونے سے پہلے ہی دوبارہ چاولوں سے بھر دیا کرتی. وہ اس کے قریب بیٹھی ہوتی تو اس کو یوں لگتا جیسے وہ اس کی ماں ہو اور اس کے کھاتے دیکھ کر خوش ہونا چاہ رہی ہو. بس یہی ایک چیز تھی جس کے سہارے وہ سانگ کی بری بھلی باتیں بھول کر بچوں کی طرح بیٹھا خوشی خوشی کھانا کھاتا رہتا. سانگ کی بیوی دوسری چینی عورتوں کی نسبت قدرے دراز قد تھی. اس کا جسم فربہی کی طرف مائل تھا, اس کی زردی مائل جلد میں سے جا بجا سرمئی رنگت جھانک رہی تھی. بادامی آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے سرمئی تھے اور دائیں رخسار کی ہڈی کے نیچے والے حصے سے دو بال نیچے کو لٹک آئے تھے. بالوں میں سفیدی کی بجلیاں سی کونت رہی تھی. اس کا چہرہ خاموش اور افسردہ سا تھا, لیکن اس کی چال تھی کہ غضب, جیسے کوئی پانی پر بہتا چلا آ رہا ہو, جیسے ہر قدم پر رقص کی چھما چھم سنائی دے رہی ہو, جیسے پائل سے بج رہے ہوں. یہ سانگ کی بیوی تھوڑی ہے, یہ تو اس کی داشتہ ہے. ایک نامعلوم رشتے کے اعتبار سے سانگ کا بھتیجا لیانگ چپکے چپکے اس کو بتایا کرتا. یہ تو اپنے وقت کی نامی رقاصہ تھی, بجلی تھی بجلی. اور سانگ کی اپنی بیوی اور متعدد داشتائیں تو اس کے وطن میں موجود ہیں, ایک بڑی سی چار چار سہنوں والی حویلی میں جس کے پائیں باغ میں شیر وہاں فوارے پانی اولا کرتے ہیں اور 24 ستونوں پر بڑی نفاست اور باریکی سے لپٹے ہوئے اشتہے پھنکارے مارتے محسوس ہوتے ہیں, اور وہ بے حد موٹی بیوی سارا دن اوٹ پٹانگ قسم کی مصروفیت میں لگی رہتی ہیں. لیانگ کے نزدیک اس سے زیادہ اہم کوئی اطلاع نہ تھی, اور صفدر کے نزدیک یہ سب سے غیر اہم بات تھی. آج بھی جب سانگ صفدر پر بک رہا تھا تو لیانگ بظاہر تو جوتے سینے والی مشین پر کام کرتا رہا, لیکن دراصل وہ منتظر تھا کہ سانگ اٹھ کر پیچھے فلیٹ میں جائے اور وہ داشتاؤں والی بات چھیڑے. مگر صفدر نے اس کا موقع نہ دیا. وہ مشین چھوڑ کر اٹھا, سٹور میں سے اپنا گٹھڑ اٹھایا اور سائیکل پر جما دیا. گرم چاکلیٹ رنگ کی پتلون کا پائنچا موڑا, اس میں کلپ لگا دیا, پھر سائیکل کو زور سے دھکیلا اور وہ تار کول کی نسبتاً خاموش سڑک پر فراٹے بھرنے لگی. یہ سڑک آج خاموش تھی اس لیے کہ آج اتوار تھی اور دن سرد. صفدر کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی اس لیے کہ وہ آج غیر مطمئن تھا اور غمگین بھی. سامعین کرام, یہ تیسرا باب تھا جو ہم نے دستک نہ دو سے آپ کو پڑھ کے سنایا, جس میں جو صفدر یاسین لیو چو جو ہے وہ مرکزی کردار ہے لڑکا, اور باقی کردار ہے. فی الحال ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. سنتے رہیے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: And online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
10: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
11: बालियां, अंगूठियां और हार,
10: जो दुल्हन करे सिंगार,
11: आज ही मामू काकी की दुकान,
10: खालिस सोने की पहचान,
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
11: आपकी शान
10: हमारी आन,
11: क्वालिटी की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
12: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
11: सोफी ज्वेलर्स?
12: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी चाहे बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
11: सोफी ज्वेलर्स, 121 ओकलेन, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
1: To become a radio presenter, please call the studio 01274306677. Bradford Asian Radio.
13: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
8: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
13: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
14: टैक्सी लाइसेंस,
13: हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
8: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
13: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
8: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
13: safewayrider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
13: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: मुझे सामीन कराम एक बार फिर आपसे मुखातिब, आपकी मेज़बान उस्मा अशफाक, प्रोग्राम इंतखाब के हमरा, जिसे आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो पर 1413 AM, और ऑनलाइन के जरिए भी हमारी नशियात आप सुन पाते हैं www.bradfordasianradio.co.uk के जरिए। साथ ही साथ सामीन कराम, सबसे आसान तरीका क्या है? जी हाँ, सबसे आसान तरीन तरीका कि हमारा स्मार्ट ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर लीजिए। खा आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, खा आपके पास आईफोन है, आप डाउनलोड कीजिए और जहाँ कहीं भी हैं हमारी नशियात से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब तक का इंतखाब आपको पसंद आया होगा, खसूसन अभी जो हमने मोहतरमा अल्ताफ़ फ़ातिमा का दस्तक ना दो, बड़ा शोहरा आफाक नावल है ये आपके गोश गुजार किया। और ये सामीन कराम दो बल्कि आप कह लीजिए तीन तहजीबों का इसमें जिक्र है। एक चीनी तहजीब है, आपने गौर किया होगा अगर सुना हो, इसके अलावा जो इंडो पाक यानी बरसगीर पाको हिंद, जब पहले पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे, अलहदा नहीं हुए थे, ये तबका उस वक्त का लिखा हुआ नावल है उस जमाने के ऊपर, और उसमें कलकत्ता और बॉम्बे और मद्रास का जिक्र है, और साथ ही साथ उसके बाद कराची का भी और कुछ पाकिस्तानी इलाकों का भी जिक्र आएगा। इंतहाई अहम नावल है सामीन कराम, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहली चीज तो यह है, आपने नोट किया होगा कि इसमें अल्फाज ऐसे हैं कि जो आजकल इस्तेमाल नहीं होते, हालांकि वो उर्दू जबान के बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, एक तो वो है। दूसरी बात यह है कि हमें तहजीबों का पता चलता है, माशरत का पता चलता है कि उस वक्त लोग कैसे रहा करते थे, क्या उनका रहन सहन था, क्या तौर तरीका था, खानदान किस तरह से आबाद होते थे। आजकल तो वो माजरत के साथ आप जानते ही हैं, बड़ा हम तो ये समझते हैं कि बड़ा टची एक किस्म का ये टॉपिक है, मौजू है, लेकिन खानदानी मुश्तरका खानदानी निज़ाम जो है वो बहुत कम होता जा रहा है, महदूद होके रह गया है। बहरहाल वो टॉपिक इस वक्त हमारा है नहीं, इसलिए हम ज़्यादा बात उस पर नहीं करेंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आप इस सिलसिले को बगौर और मुसलसल सुनेंगे तो यकीनन पसंद आएगा, अगर कभी कभी सुनेंगे तो फिर आपकी समझ में बात शायद ना आए। बहुत खुशी हुई आज सामीन कराम, बहुत ही खुशी हुई। पहले तो चौधरी मुजफ्फर साहब, आपने पैगाम पहुंचाया तारिक भट्ट साहब का, जो ड्यूजबरी से तशरीफ लाते हैं, और उसके बाद अभी बात हुई जनाब तारिक भट्ट साहब आपसे बनफसे नफीस खुद बराह रास्त, और बहुत खुशी हुई। यकीन जानिए कि ये बात हकीकत है कि जो अच्छे लिसनर्स होते हैं, जो मुखलिस लोग होते हैं आपकी जिंदगी में आते हैं, आप वाकईतन उनको भूल नहीं पाते, हम भी नहीं भूलते। ऐसा नहीं है कि आप लोग याद रखते हैं और जो प्रेजेंटर्स हैं वो कल को कहाँ और कहाँ, ये तो रोजी रोटी जहाँ इंसान की जिस तरह से लिखी होती है वहां इंसान पहुंच जाता है, लेकिन जो रिश्ता होता है ना, दिल का रिश्ता और ये जो आवाज का रिश्ता, ये हमेशा कायम और दायम रहता है। आप कहीं भी चले जाइए, आपकी मोहब्बत, आपका खलूस, आपकी दुआएं, और हमारा हमारी जो मोहब्बत है आपके लिए, हमारी जो मुखलसी है आपके लिए, जो हमारे भी दिल से दुआएं निकलती हैं, क्योंकि आप इज्जत देते हैं तो फिर इज्जत आपका हक बन जाती है। इज्जत ही के बदले में इंसान को इज्जत मिलती है, मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलती है। अमूमन बहुत कम ऐसा होता है कि आप कुछ दे रहे हैं और आपको वो चीज ना मिले जो आप दे रहे हैं, वो बहरहाल अलग चीजें हैं। लेकिन जनाब तारिक भट्ट साहब تہ دل سے آپ کے مشکور و ممنون ہیں آپ کی محبت کے، آپ کے خلوص کے، آپ کی دعاؤں کے، اور آپ کی جو عزت افزائی آپ کرتے ہیں، آپ جو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یقین جانیے بہت خوشی ہوئی ہمیں بھی آج اتنے عرصے کے بعد ڈائریکٹ آپ سے بات کر کے، اور جس طرح سے آپ نے یاد کیا، جس طرح سے آپ نے نوازا، جن الفاظ سے بس کیا کہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین. فی الحال یہ گیت ویسے ہی ہم پیش کر رہے ہیں. جی ہاں، یہ بھی ایک خاص فرمائش ہے. کن کی فرمائش ہے؟ انہوں نے نام بتانے سے انکار کیا، اس لیے نام ہم نہیں بتا رہے، گیت ہم پیش کر رہے ہیں ان کے لیے. اور جناب طارق بٹ صاحب، اس گیت کے بعد جو گیت آئے گا خصوصی طور پر، وہ ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. پروگرام کو اینڈ تک سنتے رہیے گا. بس بھول گئے، وہ کہتے ہیں نا کہ خیال نہیں رہا، کہ وہ جو ذخیرہ الفاظ میں ہم بھی اضافہ کرنے والے ہیں کہ جی الف سے آپ کچھ چند الفاظ بتا دیجئے. ابھی تک صرف جناب چودھری رخسار صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے باقاعدہ خصوصی طور پر دوبارہ کال کر کے تو الفاظ بتائے، اور بقیہ لوگوں سے ہم بات کرنا بھول گئے. اس معاملے میں عزرا صاحبہ سے بات ہوئی، سمیرہ صاحبہ سے، زرکا صاحبہ آپ نے فون کیا، طفیل صاحب آپ تشریف لائے، امجد صاحب آپ آئے پروگرام میں، طارق بٹ صاحب آپ سے بات ہوئی، چودھری مظفر صاحب آپ نے فون کیا، لیکن وہی بات ہے کہ آپ سب سے ہم الف کے بارے میں بات کرنا بھول گئے. تو اب جو بھی ہمیں کال کریں، گزارش ہے کہ الف سے کچھ ایسے الفاظ بتائیے جو بامانے ہوں، جو بہت آپ کو اچھے لگتے ہوں، دو چار الفاظ آپ بھی ضرور بتائیے تاکہ ہمارے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو، اور ہم پھر تقریباً پروگرام کے آخر سے پہلے سب سننے والوں کو اس میں شامل کریں گے، ان کو بھی بتائیں گے. لیجئے اب یہ خصوصی گیت، جن کے نام ہیں وہ جانتے ہی ہوں گے، تو سنیے گا.

जी सविनय कराम, ये खसूसी फरमाइश थी, हमने पेश कर दी, नाम बताने से उन्होंने इनकार किया था। कोई ऐसा मसला नहीं है जी, आपने अपनी फरमाइश सुन ली होगी। और मोहतरमा समीरा साहिबा, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी कि आप प्रोग्राम में फिर तशरीफ़ लाई। आपने अलिफ से वो नाम हमें कुछ बताए, आपने अलिफ से जो अल्फाज बताए हैं, बड़े ज़बरदस्त अल्फाज बताए आपने, बताया जी उल्फत, आहट, आमेजिश, आगोश, अलमिया, बड़े ज़बरदस्त अल्फाज बताए आपने समीरा साहिबा। इस सिलसिले में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। गुजारिश यही है कि एंड तक साथ रहिएगा। और जनाब चौधरी रुखसार साहब, आपने जो नाम बताए थे अलिफ से, आपने बताए थे इश्तियाक, अहबाब, इंतखाब, इख्तियार, असूल और इस्लाम। ये जनाब चौधरी रुखसार साहब, आपने ये नाम बताए थे। और जुनेद साहब, आप शामिल हुए प्रोग्राम में, आपने दो नाम बताए, दो नाम क्या बताए, दो अल्फाज बताए, अजनबी, और दूसरा आपने बताया उपनिषद। उपनिषद होता है कि क्या होता है, अभी फिलहाल नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। तो ये बहुत शुक्रिया जुनेद साहब, समीरा साहिबा, जनाब चौधरी रुखसार साहब कि आप इस सिलसिले में शामिल हुए। बहुत शुक्रिया, बड़ी आपकी नवाजिश इसको पसंद करने के लिए भी। मकसद सिर्फ और सिर्फ इसका ये है कि हम एक दूसरे से सीखें कि जब ये जो रेडियो है ना, ये बड़ा ताकतवर जरिया होता है ज़मीन कराम, बहुत ये ताकतवर मीडिया है। ये जो ब्रेडफर्ड एशियन रेडियो है, 1413 AM पे आप सुनते हैं, ऑनलाइन भी सुनते हैं और स्मार्टफोन के जरिए भी सुनते हैं, तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि इसके जरिए कुछ सीखने सिखाने का अमल भी जारी और सारी रहे। अगर आपको याद हो बचपन में कभी, अगर आपको इत्तफाक हुआ हो, आप उस वक्त अगर पाकिस्तान की में आपकी पैदाइश है, इंडिया की पैदाइश है, तो आपको याद होगा कि बहुत लोग रेडियो सुना करते थे, यहां भी सुनते थे, लेकिन हम प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं जो उर्दू के प्रोग्राम्स होते थे। और हमने देखा मीडिया के ऊपर कि उसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स थे, तलकीन शाह थे, एक और बहुत पुराना नाम हमारे बताया अशफाक साहब ने, क्या था उसका नाम, निज़ामुद्दीन, जी हाँ, अब प्रोग्राम का नाम पता नहीं क्या था, लेकिन उन्होंने बताया कि निज़ामुद्दीन थे, वो प्रोग्राम पेश किया करते थे शायद फौजी भाइयों के लिए, इस तरह से। तो ये जरिया सामने कराम, टीवी बाद में आया, और टीवी के बाद आपको इल्म है कि बहुत से गैजेट्स आ गए, नाम क्या गिनवाएं, सबको इल्म है, सबके सबको मालूम है, लेकिन आप देख लीजिए रेडियो की आज भी अहमियत कम नहीं हुई है, वरना खत्म हो चुका होता। बहुत सी चीजें आई, बहुत सी चीजें खत्म हो गई, उनका वजूद बाकी नहीं है, लेकिन रेडियो एक ऐसा जरिया है कि वो तब से चल रहा है और अब तक चल रहा है, बल्कि हम समझते हैं कि ये चलता रहेगा। और खसूसन आपने नोट किया होगा कि जो जरा दरमियानी उम्र के बुजुर्ग होते हैं ना खास तौर पे, और जो बड़ी उम्र के बुजुर्ग होते हैं खसूसन, वो लोग अभी भी किस चीज को प्रेफर करते हैं, वो रेडियो सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये भी होता है ना कि नजर कमजोर हो गई, आप टीवी हर वक्त देख भी नहीं सकते, टीवी हर जगह मयसर भी आपको नहीं होता, लेकिन अब ये जो स्मार्टफोन आ गए हैं, इनकी बदौलत आप वो, अब रेडियोज के एप्स हैं, आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां भी बैठे हैं इंटरनेट आपको होना चाहिए और आप इस आवाज को सुन सकते हैं। और वही बात है कि रेडियो आप जब सुनते हैं, आप बहुत से काम भी साथ निपटा लेते हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं है, तो बड़ी आसानी हो गई, और ये बड़ा जबरदस्त जरिया है, बहुत अच्छा जरिया है। और यकीन कीजिए कि रेडियो के जब आप बोलते हैं तो आपको अपना, अपनी जबान पे, उस पर अबूर होना चाहिए। ये हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम वैसे एक बात कर रहे हैं कि रेडियो पे बात करने के लिए आपके पास थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए कि आप कुछ बात कर सकें। उसके अलावा फिर आपके अल्फाज का चुनाव होता है कि आप किस तरीके से बात करते हैं, क्या बात करते हैं, और फिर आपका लबो लहजा होता है कि आप कितने पानी में हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, आप लोगों की पसंद नापसंद को भी मद्देनजर रखना होता है, आपको अपनी, आपकी जो जाती शख्सियत होती है वो उभर के आपके सामने आती है, क्योंकि जाहिर है जो हमें पसंद होगा हम वही आपके लिए पेश करेंगे ना। आपकी पसंद तो बाद में हमें पता चलेगी, लेकिन जो हम समझते हैं कि अच्छी बात है, और हमेशा हमारा यही नुक्ता नजर रहा है, यकीन कीजिए कि इसके जरिए कुछ थोड़ी बहुत पते की बातें, कुछ इल्म की बातें, दानिश की, अक्ल की बातें, अच्छी बातें, जिन्हें कहते हैं ना हरूफे
اقوال زنی کہتے ہیں, سنہرے حروف کا نام دیا جاتا ہے. ہمارے اپنے الفاظ نہیں, ہم بات کر رہے ہیں ان دانشوروں کی, ان سائنسدانوں کی, ان شاعروں کی, ان بزرگوں کی باتوں کی. احادیث ہیں, دین کے حوالے سے ہوں, معاشرتی حوالے سے ہوں, سماجی حوالے سے ہوں, تعلیم کا شعبہ ہے, جتنے بھی شعبہ ہے جات ہیں زندگی ہیں, ان سب پہ بات ہوتی ہے. لیجئے, ہم نے کہا تھا نا کہ خوبصورت سا ایک گیت پیش کریں گے, تو یہ خوبصورت سا گیت سنیے گا.

कि उसको उठा देंगे आप, हिला जुला देंगे, एक लफ्जी अगर माने देखा जाए, लफ्जी मफहूम देखा जाए, उसकी बात की जाए तो ये बनता है। और वैसे क्या है, बड़ा गहरा मफहूम है कि जो शख्स ला इल्म है उसको तो इल्म दे देंगे आप, वो तो बड़ा आसान है इल्म दे देना, बात कह देना, बता देना। लेकिन जो पहले से जानता है, जिसे उस चीज का पहले से इदराक है, आगही है, उसके बावजूद अगर कोई शख्स उस बात को नहीं मानता, उस बात को नहीं मानने को तैयार नहीं होता, तो फिर उसको समझाना और बताना सामीने कराम बड़ा मुश्किल काम होता है। और हम ये समझते हैं, ये हमारा जाती ख्याल है, आपका मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है, इसी को जहालत कहते हैं कि हक और सच आपके सामने हो, बात आपको इल्म होगी ये सही है, ये सच्ची है, ये हकीकी है, उसके बावजूद आप उसका इनकार कर दें, आप उसको ना माने। अब वजह कोई भी हो सकती है, जिद की वजह से, या आपका वाकई आप समझते हैं कि नहीं जी ये बात सच्ची हो नहीं सकती, हमारा दिल नहीं मानता कि हम इस बात को माने, या फिर आपको कोई बुग़्ज़ है उस शख्स से जो बात कर रहा है वो सच्ची और सही बात, आप उसकी बिना पर उससे नहीं मानते, आप नफरत की वजह से नहीं मानते, आपको ज़ोम है कि आप बहुत बड़े आलिम हैं, आपको हर बात पता है, और ये बात चूंकि आपके इल्म में नहीं है इसलिए आप उसको नहीं मानेंगे, तो बहुत सी वजूहात हो सकती हैं इसके पीछे। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि खुद अल्लाह का फरमान है ना कि हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। तो अगर आप साहिब इल्म हैं, अगर आप साहिब इदराक हैं, अगर आपको आगे ही है बहुत सी चीजों की, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है क्या कोई भी शख्स इतना बड़ा आलिम फाजिल हो गया है कि अब उसे मजीद जानने की, मजीद सुनने की, मजीद कुछ इल्म हासिल करने की जरूरत बाकी नहीं रही। कायनात फैली हुई है अल्लाह की, चार सू फैली है, और इतना इल्म है, इतना इल्म है कि कोई शख्स कितना भी इल्म हासिल कर ले वो ऐसे ही होगा जैसे सुई होती है ना बारीक सी, वो नीडल सीने वाली, कपड़े सीने वाली, उसकी जो नोक होती है जितनी वो बारीक है, आप समझिए कि बस उसको अगर समंदर में डालें तो जितना पानी उस नोक को टच करेगा, छुएगा, बस उतना ही हमारा इल्म है। इस इल्म के मुकाबले में जो हमारे इर्द गिर्द हर तरफ फैला हुआ है और जिसे अल्लाह ताला क्या कहते हैं, निशानियां करार देते हैं, तो अगर हम इन निशानियों को झुटलाएंगे तो कसूर किसका हुआ, निशानी का नहीं है, कसूर हमारा अपना है। आंख नाक कान खुले रखने चाहिए, अपने आप को, अपने होशो हवास जो है उन्हें कायम और दायम रखने की कोशिश करते रहना चाहिए और इल्म हासिल करते रहना चाहिए, चाहे आप जितने भी बूढ़े हो जाएं। इसमें कोई तख़सीस हरगिज़ नहीं है कि किसकी क्या उम्र है, किसका क्या मकाम है, किसका क्या ओहदा है, रुतबा है, कौन मर्द है, औरत है, ना जिन से कोई ताल्लुक है इसका, ना इसका और चीजों से। तो इल्म बस इल्म है, ये मीरास है, नबियों की मीरास है, जरा गौर कीजिए, ले लेना चाहिए जहां से मिले, जो दे आपको ले लेना चाहिए। तो बहरहाल ये खूबसूरत सा गीत हम किसके नाम करते हैं, रेहाना साहिबा बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आप प्रोग्राम में शामिल हुई, बहुत शुक्रिया आप कि मेहमान आपके पास आई हैं, हमीदा साहिबा जी हाँ पाकिस्तान से, उनको हम खुशामदीद कहते हैं यहाँ पे। अल्लाह करे कि जितना उनका यहाँ पे गुजरे कयाम हो, कयाम ताम, वो बहुत अच्छे तरीके से गुजरे, खैर आफियत के साथ वो अपना वक्त गुजारे, बहुत बल्कि अच्छा वक्त गुजारे। और इसके साथ ही हम उनके लिए बहुत खूबसूरत सा ये गीत आने वाला पेश करने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस गीत को वो पसंद करेंगी। रेहाना साहिबा आपके लिए भी यही गीत लीजिए, फिलहाल इसको सुनिएगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिक है लेकिन बड़ा खूबसूरत है, इसकी शायरी बहुत खूबसूरत है और धुन के क्या ही कहने, और उसके ऊपर लता मंगेशकर की आवाज, वाह, और शैलेंद्र सिंह, सॉरी भूपेंद्र सिंह की आवाज है।

0: सबके रात दिन।
1: जी सामिन कराम, जितनी भी उम्र हो जाए, जितना भी इंसान बढ़ जाए आगे, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। ये इंसान की शायद फितरत में है, साइकी में है। वही बात है ना कि पुरानी चीज़ें, पुराने गीत, पुराने लोग, पुराना ज़माना सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगता है इंसान को और तकरीबन हर शख्स को, माँ सिवा उन लोगों के जो बड़े प्रैक्टिकल किस्म के लोग होते हैं, बहुत बड़ी जल्दी आगे बढ़ जाने वाले लोग होते हैं। वैसे ये हमारा मानना है, आप इससे मुत्तफिक हो या ना हो, आप इससे इख्तलाफ का पूरा पूरा हक रखते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन अमूमन लोग जो होते हैं ना, वो नॉस्टैल्जिक ही होते हैं। पुराना जमाना हमेशा अच्छा लगता है, गुजरा हुआ जमाना। लेकिन वही शायर ने ये भी कह दिया ना, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। यही उसका सबसे शायद इसीलिए बड़ा खूबसूरत है, ये जो चीज़ हाथ नहीं आती ना, इंसान को बहुत अच्छी लगती है। चौधरी रुखसार साहब, बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपके मशकूर। आपने बल्कि शर्मिंदा कर दिया हम लोगों, तो आप यहाँ बैठे ही आपकी कॉल्स के मुंतजिर होते हैं कि आप लोग कॉल करें और इतनी वही बात फिर कहेंगे कि इतने गौर हौस के साथ जो प्रोग्राम सुने, इतने इश्तियाक के साथ, तो हमें क्यों बुरा लगेगा। आप खुद बताइए, खुद सोचिए आप। तो बहरहाल आपने आपने तस्दीक की हमारी गलती की कि आपने कहा था इब्तदा, आपने लफ्ज बोला था, आपने हमने शायद पता नहीं कौन सा लफ्ज बोल दिया। बहरहाल आपने बताया इब्तदा, इंतहा, इंतकाम, ये आपने अल्फाज मजीद बताए, आपने बताए थे। तो बहुत शुक्रिया इस सिलसिले में शामिल होने का, और इस सिलसिले को अब यहीं पर हम खत्म भी करते हैं क्योंकि तकरीबन 12:15 हो चुके हैं। और कौन कौन से अल्फाज आज मौसूल हुए सामिने कराम? इश्तियाक बताया था चौधरी रुखसार साहब ही ने, इसका इंतखाब किया था, बताया था अहबाब, इंतखाब, इख्तियार आज बताया था, और साथ आपने अभी इब्तदा, इंतहा, इंतकाम, इस्लाम, असूल, ये अल्फाज आपने बताए थे। इश्तियाक का मतलब क्या होता है? इश्तियाक का मतलब होता है सामिन, जिस चीज़ का बहुत शौक हो आपको, उसको इश्तियाक कहते हैं। जी हमें बहुत इश्तियाक है आपसे मिलने का, या हमें बहुत इश्तियाक है फलां चीज देखने का। अहबाब, आप जानते हैं, दोस्त अहबाब जिन्हें हम कहते हैं, जिनको हम जानते हैं, जान पहचान के लोग, सलाम दुआ के लोग, अहबाब जो आपके इर्द गिर्द होते हैं उनको अहबाब कहा जाता है। हबीब है ना, हबीब से फिर अहबाब होता है। इंतखाब होता है, इंतखाब आप खुद करते हैं, अपनी आपकी चॉइस जिसे कहते हैं वो आप करते हैं। इख्तियार होता है इंसान का कि कुछ चीजें आपके इख्तियार में हैं जिनको आप कर सकते हैं, जिन पे आपका चलता है, आपके दायरा कार में होती हैं, कुछ चीजों में आप बे इख्तियार होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो बताया इब्तदा, के हर काम की एक इब्तदा होती है, आप शुरू करते हैं, आगाज जिसे कहते हैं, उसके बाद उसकी इंतहा भी होती है, उसे जब आप खत्म करते हैं, इंतकाम लफ्ज बताया चौधरी रुखसार साहब आपने, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। पहली बात तो ये कि इस पूरे सिलसिले में शामिल होने के लिए, इतना वक्त निकालने के लिए कि आपने हमें ये अल्फाज अदा किए। और फिर आपने ड्रामे का भी नाम लिया, एक था ड्रामा आगोश होता था, आहट ड्रामा था, उसका भी आपने बताया। समीरा साहिबा, आप शामिल हुई थी इस सिलसिले में, आपने बताया था उल्फत, आहट, आमेजिश, आगोश, अलमिया, तो ये बड़े खूबसूरत अल्फाज थे। इसमें अलिफ मद्दा से भी अल्फाज हैं, जैसे कि आमेजिश, आगोश, ये गुज़िश्ता हफ्ते हमने किए थे, आहट ये अलिफ मद आ से है, उल्फत क्या होती है, मोहब्बत जो होती है उल्फत, और आहट क्या होती है, वो जो हल्की सी आवाज जिसे कहते हैं ना, उसे कहते हैं आहट। आमेजिश क्या होती है, आमेजिश होती है जब आप दो चीजों को मिला देते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम कहते हैं कि जी आमेजिश हो गई इस चीज की। आगोश गोद को कहते हैं, जैसे माँ की आगोश, माँ की गोद। इसके अलावा अलमिया, इसका क्या मतलब होता है? अलमिया होता है कि जो एक गमगीन हादसा जो गुजरता है ना, उसको अलमिया उर्फ आम में कहा जाता है। ये आपने बताए थे अल्फाज। और साथ शामिल कौन हुए थे जुनेद साहब? आपने बताया था अजनबी, लफ्ज आपने बताया था अजनबी, जिसे आप जानते नहीं होते। और एक और लफ्ज आपने बड़ा खूबसूरत बताया, उपनिषद, उपनिषद या उपनिषद ही हम समझते हैं कि सही इसका तलफ्फुज़ है, अगर हम गलत हो तो आप में से जो सही जानते हो वो इसको बता सकते हैं। ये जो हिंदू मजहब है, जो लोग हिंदू के मत के मानने वाले हैं, ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं, और उनकी जो मजहबी किताब है उसका ये नाम एक कहा जाता है उपनिषद, उसको कहते हैं, वो उनकी मजहबी जो किताब है उसका ये नाम होता है। तो बहरहाल ये आज के हमारे अल्फाज थे, الف سے شروع ہونے والے, ہم تہ دل سے مشکور ہیں. اور کون ونر ہے؟ جی ہاں, جو سرپرائز تھا وہ سرپرائز یہ ہے کہ ویسے تو اگر اصولاً دیکھا جائے تو جناب چودھری رخسار صاحب آپ ہی اس کے ونر بنتے ہیں, کیونکہ آپ نے بہت الفاظ بتائے, آپ نے دو مرتبہ کال کی اس سلسلے کے لیے, پھر آپ نے تصحیح بھی کی, اور سمیرہ صاحبہ جیسا کہ آپ شامل ہوئیں, جیسا کہ جنید صاحب آپ شامل ہوئے اس سلسلے میں, تو ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے شکر گزار ہیں, مشکور ہیں تہ دل سے. اور یہ جو خوبصورت سا گیت ہے نا, یہ ہم انعام کے طور پر چودھری رخسار صاحب, محترمہ سمیرہ صاحبہ اور جناب جنید صاحب, یہ ہم آپ کے نام کرتے ہیں خصوصی طور پر, کیونکہ آپ اس سلسلے میں شامل ہوئے, ہمارے ذخیرہ الفاظ میں آپ نے اضافہ کیا, ہمارے علم میں اضافہ کیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. تو لیجئے, ایز اے سرپرائز, ایز اے گفٹ کہہ لیجئے, یہ خوبصورت سا گیت یقیناً آپ پسند کریں گے. یہ سمیرہ صاحبہ اور جناب چودھری رخسار صاحب اور جنید صاحب, آپ کے نام.
0: ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.

0: जी सविनय कराम, खूबसूरत सा आपने क्लासिक गीत सुना। उम्मीद तो यही करते हैं कि जिनके लिए खसूस तौर पर पेश किया उन्होंने पसंद किया होगा। जी हाँ, चौधरी रुखसार साहब, ये आपके लिए गीत था। जनाबा समीरा साहिबा आपके लिए, और जनाब जुनेद साहब आपके लिए, क्योंकि आप वो जो अलिफ से अल्फाज का जखीरा था उस सिलसिले में आज आप शामिल हुए। आपने अल्फाज बताए, हमारे इल्म में इजाफा किया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जिंदगी रही सेहत रही तो बे से हम अल्फाज शुरू करेंगे और आप उस सिलसिले को मजीद शामिल हो जाइएगा। एक खूबसूरत सी हमारे पास नज्म है, सुनाते हैं आपको आदमी के उनवान से। आदमी आदमी तो जंगल है आस और ख्वाहिश के, जिसमें झाड़ उगते हैं। आदमी आदमी तो जंगल है आस और ख्वाहिश के, जिसमें झाड़ उगते हैं। आदमी समंदर है प्यार और नफरत की, लहरें मौजजन जिसमें हर घड़ी उछलती हैं। आदमी तो पत्थर है जिसपे सूरतों के नक्श इतने गहरे होते हैं कि कभी नहीं मिटते। आदमी तो मौसम है जो बदलता रहता है। आदमी तो बारिश है, आदमी तो मौसम है जो बदलता रहता है। आदमी तो बारिश है जो बरसता रहता है। आदमी सभी कुछ है, काश आदमी लेकिन आदमी तो बन जाता। क्या बताइएगा, कैसी लगी आपको ये नज्म कि आदमी तो जंगल है आस और ख्वाहिश के, जिसमें झाड़ उगते हैं। आदमी समंदर है प्यार और नफरत की, लहरें मौजजन जिसमें हर घड़ी उछलती हैं। आदमी तो पत्थर है जिसपे सूरतों के नक्श इतने गहरे होते हैं कि कभी नहीं मिटते। आदमी तो मौसम है जो बदलता रहता है। आदमी तो बारिश है जो बरसता रहता है। आदमी सभी कुछ है, काश आदमी लेकिन आदमी तो बन पाता। समीने कराम, आपसे गुजारिश है, बताइएगा आपको ये नज्म कैसी लगी। हम जानना चाहते हैं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि वाकईतन आदमी सभी कुछ होता है। आदमी जनाब नफरत का उबलता हुआ समंदर भी होता है, आदमी मोहब्बत का दरिया भी होता है जो बड़ी रवानी के साथ बड़े सुकून से बहता रहता है। आदमी जो है उसमें ख्वाहिशात उगती रहती हैं। आदमी में जो है वो क्या कहिए कि आस उम्मीद पे जिंदा रहता है। वो बहुत सी चीज़ें, बहुत से ख्वाब देखता है इंसान। आदमी हमेशा फिर उनकी तगादों में, हासिल करने के लिए तगादों में लगा रहता है। लेकिन वही बात है कि आदमी आदमी बनना बाज़ औक़ात भूल जाता है कि असल चीज़ ये है कि आदमी आदमी है। अल्लाह ताला ने इस आदमी को, इस इंसान को जब दुनिया में भेजा, पैदा किया, तो वो जो शायर कहता है ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। कि फरिश्ते बहुत थे इबादत के लिए, सब कुछ था, लेकिन आदमी का काम है कि वो जो उसका खालिक उसका मालिक है ना, उसके हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करे। जब आदमी भूल जाता है ना कि उसका कोई मालिक और खालिक है, जब वो खुद खुदा बन बैठता है, अपने नफ्स को खुदा बना लेता है, तो जाहिर है सारी खराबी समीने कराम वहीं से पैदा होती है।
1: 1274-306-677. Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets, or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange, and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
3: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
2: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
3: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
3: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
3: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644।
4: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
2: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
2: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
5: बालियां, अंगूठियां और हार,
2: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
2: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
2: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
6: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सूफी ज्वेलर्स?
7: सूफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ,
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 ओकलेन, BD94QU, 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
8: To become a radio presenter, please call the studio 01274306677. Bradford Asian Radio.
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
10: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: जी सामीन कराम, इस वक्त आप समाप्त फरमा रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात 1413 AM पे। ऑनलाइन ये नशियात पहुंच रही हैं आप तक www.bradfordasianradio.co.uk के जरिए, साथ ही साथ हमारे स्मार्ट ऐप के जरिए आप अपने फोन पर हमारी नशियात से लुत्फंदोज हो सकते हैं। और आपसे मुखातिब है इस वक्त आपकी मेजबान उस्मा अशफाक, प्रोग्राम इंतखाब के हमरा। सामीन कराम, अब चंद मिनट रह गए हैं हमारे आपके साथ, और तहे दिल से हम आपके मशकूर और ममनून हैं, खसूसन जो हमारे काबिल एहतराम कॉलर्स हैं कि जो प्रोग्राम में शामिल होते हैं बाकायदगी के साथ और हमें मसरूफ रखते हैं। वक्त गुजरने का यकीन जानिए कि एहसास ही नहीं रहता है, मेहनत वसूल हो जाती है। किस तरह से, जाहिर है अगर हम अपना वक्त निकाल के आपके लिए आते हैं, प्रोग्राम पेश करते हैं, और आप सामीन कराम जब उसमें शिरकत करते हैं, जब अपनी आरा, अपनी जो तजावीज हैं वो, या अपना फीडबैक जिसे कह लीजिए, हम तक पहुंचाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत कह लीजिए कि एक ताजगी का एहसास होता है, एक तवानाई एनर्जी जो है ना, जो चाहिए होती है प्रोग्राम को करने के लिए, वो मिल जाती है। तो बहुत शुक्रिया, बड़ी आपकी नवाजिश कि आप इन सिलसिलों को पसंद करते हैं जो हम आपके लिए लेके आते हैं, खा वो नावल का सिलसिला हो, खा वो अशफाक अहमद साहब का जाविया हो, जो अपने मंडे के प्रोग्राम में हम आपके लिए लेके आते हैं, आपको सुनाते हैं उसका एक बाब। इसके अलावा हम चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसी खूबसूरत शायरी आपके लिए पेश की जाए, आपके ज़ौक की तस्कीन के लिए, जो आप लोग पसंद करते हैं, या फिर आपसे कोई ना कोई बातचीत जो होती है वो भी हम, आप जानते ही हैं, करते रहते हैं। अमूमन आजकल हम ज़रा मौजूआत पे कम तवज्जो देते हैं, उसकी वजह है, बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि उसके लिए बहुत तैयारी की ज़रूरत होती है। पहली बात हम ये समझते हैं कि जब तक आपको उस पर कुछ, चलिए, मुकम्मल अबूर तो हासिल नहीं हो सकता, जो बात अभी पहले हुई, इल्म की, आगही की, अदराक की, दानिश की, कह लीजिए मालूमात की, कि हर शख्स के पास इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप किसी एक टॉपिक को लेके बैठते हैं, उस पर आप बात करना चाहते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप एक मखसूस उसको वक्त दीजिए, और सीरियस नोट पे उसके बारे में आपके पास आदाद और शुमार होने चाहिए, आप उस पर बात कीजिए। आपका अपना नुक्ता नज़र पहले तो वाजे आखिर में आपको करना चाहिए, आप सबकी बात सुनिए, और आप लोगों को भी पता हो जी इस टॉपिक पे, इस मौजू पे बातचीत हो रही है, आपसे हम चाहते हैं कि आप अपना नुक्ता नज़र वाजे कीजिए इस बारे में, ताकि बाकी लोगों का भी भला हो। ये माशरे के लिए बहुत ज़रूरी होता है ऐसे मौजूआत पे बातचीत भी करना, और उनके बारे में जो है उनको एड्रेस करना, फिर उनका हल, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उनका हल तलाश करने की कोशिश करना, वरना बात खाली कर लेने के से मकसद पूरा होता नहीं है और होना चाहिए भी नहीं। चलिए, बहरहाल अब ये खूबसूरत सा गीत हम आप तमाम सुनने वालों के नाम करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप इसको पसंद करेंगे। और रेहाना साहिबा, हमने आपसे कहा था कि वो गीत हमने हमीदा साहिबा के लिए पेश किया जो आपकी मेहमान है। रेहाना साहिबा, ये पुराना सा गीत आपके नाम हम करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप पसंद करेंगी, क्योंकि आपको पुराने गीत पसंद हैं, आप बता चुकी हैं अपनी पसंद से, हमें आगाह कर चुकी हैं, इसलिए ये गीत हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं। लीजिए सुनिएगा।

0: DAB+, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping, featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 81-83 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07-885-428-349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio,
3: please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुताफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
8: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
7: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644
9: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
10: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
10: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
11: बालियां अंगूठियां और हार
10: जो दुल्हन करे सिंगार
11: आज ही मामू काके की दुकान
10: खालिस सोने की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
11: आपकी शान
10: हमारी आन
11: क्वालिटी की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑक लेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑक लेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
13: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
14: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
13: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
14: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
13: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
14: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679
13: saferaider.co.uk UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
14: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
13: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर।

0: on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
9: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
9: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.

ब्रेकफोडेशन रेडियो की आवाज है 1413 मीडियम वेव पर। यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से सुना जा रहा है ये ब्रेकफोडेशन रेडियो की आवाज है 1413 मीडियम वेव पर। यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से सुना जा रहा है

दोस्तों, हमारे अहवाल तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। बेहतरीन है। रही मौसम की बात, तो मौसम का अहवाल आज कुछ यूं है कि सुबह से बादल छाए हुए हैं, कभी कभी सूरज बादशाह झलक दिखाते हैं। टेम्परेचर इस वक्त 20 सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक सारा दिन मौसम अबरालूद रहने का, मजमूरी तौर पर मौसम खुश्क रहने का खदशा जाहिर किया गया है। टेम्परेचर 24 सेंटीग्रेड तक जाएगा। अभी स्टूडियो में बहुत शदीद गर्मी, मैंने आते ही फैन ऑन किया है तो ज़रा नस्बता बेहतर हो गया, खिड़कियाँ खोली।

दरवाजा खोला ताकि मजे के साथ आपसे मुलाकात हो सके और आपका प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। गजल शेरी का आगाज उसके नामे नामी से हो चुका है जिसे लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। कोई खुदावंद करीम कहकर इल्तिजा करता है, कोई भगवान कहकर प्रार्थना करता है, कोई वाहे गुरु कहकर इजलास करता है, कोई गॉड या लॉर्ड कहकर घुटने टेकता है। उसे किसी भी नाम से, किसी भी वक्त, किसी भी लहजा, किसी भी आन, किसी भी दुख, किसी भी तकलीफ, किसी भी परेशानी, किसी भी मुसीबत, किसी भी बीमारी में एक बार दिल की गहराइयों से पुकार कर देखिए, वो हमारी आवाज पर लब्बैक कहता है। और दोस्तों, सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि हम सब झुकते एक ही के नाम से, झुकते एक ही के सामने हैं, मानते एक ही से हैं, और बेशक वो हम सबका रब है, वो हम सबका रब्बुल आलमी है।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छुई, मैं हूँ रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। आइए उन मेहमानों का तारुफ करा दें जो हमारी बज़्म में तशरीफ ला चुके हैं और इसकी इज्जत और तौकीर में इजाफा कर रहे हैं। रियासत साहब हमारे हमराह मौजूद हैं हरफील के हसीन वादी से, वक़ार मियाँ तशरीफ लाए हैं वेकफील से, सुमेरा हमारी बावची खाने की रानी बिटिया ब्रेडफोर्ड 3 से हमारे हमराह मौजूद हैं, रियाज साहब तशरीफ लाए हैं ब्रेडफोर्ड की ससीन वादी से, डॉक्टर माहरुख साहब मौजूद हैं आप ब्रेडफोर्ड की ससीन वादी से, भगत सिंह साहब लीच से हमारे हमराह मौजूद हैं, और कराची पाकिस्तान से हमारी प्यारी प्यारी बिटिया सरोज खालिद अभी अभी बज़्म में शामिल हुई हैं। हमने दिल की तमाम तर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों जिन अहबाब के अस्माए ग्रामी मैंने अभी आपकी नज़र किए, इन तमाम अहबाब ने आप तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में और नादीदा लिसनर और सोते मुजाहिदों की खिदमत में मोहब्बत और अकीदत से लबरेज सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा भेजा है। मैं अपने तमाम सामईन को, नाज़रीन को और अपने मेहमानों को जिनकी आमद आते ही शुरू हो जाती है, आप सबको दिल की तमाम तर गहराइयों से गजल उसने छेड़ी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आज का ये दिन आपके लिए बेइंतहा खुशगवार रहे, मैं चलूँगा आपको लेकर हरफील की हसीन फजाओं में जहाँ मौजूद हैं रियासत साहब अपने अहले खाना के हमरा और सुनना चाहते हैं अपनी बेगम की पसंद का ये खूबसूरत गीत। और कह रहे हैं छुट्टियां हैं स्कूल की, बच्चे भी साथ मौजूद हैं, बेगम सामने बैठी हैं और हम गार्डन में बैठे हैं। आहा, क्या समा बनाया है आपने। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे और अपने हिज्ज़ो अमान में रखे। आपका तोहफा लेकर हाजिर हूँ, कबूल फरमाइए।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: पीले पत्तों का मौसम जा चुका है,
7: और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। मैं हूं रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। अब हम चलते हैं आपको कराची, पाकिस्तान लेकर, जहां मौजूद हैं हमारी बहुत ही प्यारी सी बिटिया, जो कभी बहुत नटखट शरीर हुआ करती थी, अब बहुत संजीदा हैं, अपने हसीन साथी, दोस्त और वालदा ग्रामी के रुख्सत होने पर। इस दुआ के साथ के अल्लाह ताला हमारी बहुत खूबसूरत लिसनर शाहना जरी के दर्जात को बुलंद करे और मगफिरत फरमाए और लवाहकीन को सब्र जमील दे। सरोश कहती हैं कि राहते जिस्म जहाँ है तेरा ख्याल, मैं वहाँ हूँ जहाँ है तेरा ख्याल, हर घड़ी मेरे साथ रहता है ये जो दिल में नेहा है तेरा ख्याल। तू जरा मेरा शौक तो देख, मंजरे गुलस्तां है में तेरा ख्याल, शब फुरकत नहीं गिरा मुझको, हर नफस जूफिशां है तेरा ख्याल। कम नहीं खार लाला वो गुल से, कितना दिल का समा है तेरा ख्याल, एक पल भी जुदा नहीं होता, नेमते जां विदा है तेरा ख्याल, इस कली धूप के सफर में जमाल, ये सुकून साहिबा है तेरा ख्याल। एक मरतबा फिर इस दुआ के साथ के अल्लाह ताला हमारी खूबसूरत लिसनर शाहना जरी के दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और उनकी प्यारी सी दोस्त और प्यारी सी बिटिया सरोज खालिद और तमाम बहनों को सब्र जमील अता फरमाए।

दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको बर्ले लेकर चलें और शकील भाई की पसंदीदा गजल उनके नाम करें, खुशामदीद कहना चाहेंगे मैनचेस्टर के सनती शहर से तशरीफ लाए हैं हमारे मोहतरम लिसनर चौधरी रुखसार अहमद साहब, जिन्होंने बेइंतहा दुआओं के साथ मोहब्बत भरा सलाम हमारी नज़र किया है और साथ ही साथ तमाम सामईन नाज़रीन की खिदमत में भी मोहब्बत भरा सलाम भेजा है। साथ ही साथ फूलों का एक हसीन गुलदस्ता लाए हैं जिसकी महक ने, जिसमें उनकी मोहब्बत और गुलाब के फूलों की महक हमारे पूरे स्टूडियो में महक रहा है इस वक्त, उनका यह हसीन गुलदस्ता। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत से रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हम आपको दिल की तमाम तर गहराइयों से गजल उसने छेड़ी में खुशामदीद कहते हैं। चलते हैं बढ़ने। शकील साहब कहते हैं कि ए दोस्त क्या बताएं कि क्या क्या ना हो सका, ए दोस्त क्या बताएं कि क्या क्या ना हो सका, हमसे तेरे सितम का शिकवा ना हो सका, हमसे तेरे सितम का शिकवा ना हो सका। खूबसूरत शेर है। ए दोस्त क्या बताएं कि क्या क्या ना हो सका, हमसे तेरे सितम का भी शिकवा ना हो सका। आपकी पसंदीदा गजल लेकर हाजिर हूं, कबूल फरमाइए। आमद का हमेशा की तरह बेइंतहा शुक्रिया।

और अब वक्त हुआ है आपके पसंदीदा सेगमेंट एक शायर एक गीत और दो आवाजों का। आज जो हमारे मेहमान शायर हैं जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, एक मरतबा फिर आनंद बख्शी, जिन्हें ये एजाज हासिल है कि आपने कभी हिंदुस्तान से बाहर का सफर नहीं किया, जहाज पर बैठने से डरते थे, और इन्हें ये एजाज हासिल हुआ कि दुनिया के हर कोने में लोग इनके कलाम से, इनके नाम से, अल्लाह ताला ने इतना इन पे करम किया कि जाने और पहचाने जाते हैं, और इनका कलाम लाखों दिलों की धड़कन है। बेशुमार फिल्मी गीत आपने तहरीर किए, बेशुमार एजाजात से आपको नवाजा गया, और हर गीत पहले गीत से ज्यादा मकबूल हुआ करता था। बात है ये 1976 की, एक फिल्म आई जिसका नाम था महबूबा, जिसके सितारे थे राजेश खन्ना और हेमा मालिनी। उसमें एक गीत ने शोहरत और मकबूलियत की तमाम तर बुलंदियां तय की। गीत तहरीर किया था आनंद बख्शी ने और उसे मौसीकी से संवारा था अपने वक्त के मायानाज मौसीकार आर डी बर्मन ने। उनका एक गीत इस कदर मकबूल हुआ और ये गीत दो फनकारों के हिस्से में आया, किशोर कुमार और लता मंगेशकर। 1976 की फिल्म महबूबा का ये गीत हमने आज इस सेगमेंट के लिए मुंतखब किया है। आइए आपको 1976 में लिए चलते हैं। वो दिन है, आज का दिन है, ये गीत जब भी हवा के जोश पर लोगों के कानों तक पहुंचता है तो रस घुलता है, और ये आवाजें ऐसा लगता है कि इन्हीं गीतों के लिए बनाई गई थी। आर डी बर्मन की मौसीकी, आनंद बख्शी का गीत, और पिक्चराइज हुआ ये राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर। आवाज का जादू जगा रहे हैं किशोर कुमार। गीत सुनकर आप यकीनन महसूस होंगे। तो आइए एक शायर एक गीत दो आवाजें और तोहफा आप सबकी मोहब्बतों चाहतों और प्यार के नाम। तो आइए एक शायर एक गीत दो आवाजें और तोहफा आप सबकी मोहब्बतों चाहतों और प्यार के नाम।

सो आदि बर्मन ने एक इंटरव्यू में अपने बताया था कि जब ये गीत किशोर कुमार को सुनाया गया, उन्होंने बहुत तहम्मुल के साथ इस गीत को सुना और उसके बाद आदि बर्मन ने उन्हें मौसीकी इसकी बताई कि ये गीत है और तर्ज इसकी ये होगी। किशोर कुमार आ गए, उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, बहुत अच्छी आपने तर्ज बनाई है, लेकिन पहले ये लता की आवाज में रिकॉर्ड होगा और उसके बाद मैं इसे रिकॉर्ड कराऊंगा। उन्होंने कहा कि आप जब तक रिहर्सल नहीं करेंगे तो गीत कैसे रिकॉर्ड कराएंगे, अभी तो मैंने आपको गीत और मौसीकी से सुनाई है। उनका वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप लता की आवाज में इसको रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर मैं रिकॉर्ड करूंगा। उस जमाने में किशोर की और लता मंगेशकर की तूती बोलती थी, उनकी बात को रद्द तो कोई कर नहीं सकता था। आर डी बर्मन राजी हो गया, उन्होंने कहा कि मेरा अब भी ख्याल यह है कि जब तक आप इसकी रिहर्सल नहीं करेंगे गीत गा नहीं पाएंगे। उनका वो आप मुझ पर छोड़ दें, आप लता की आवाज में रिकॉर्ड कर लें, मैं कल आके रिकॉर्ड करवाऊंगा, सुनूंगा और रिकॉर्ड करवाऊंगा। हुआ ये कि लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को रिकॉर्ड किया गया। दूसरे दिन किशोर स्टूडियो तशरीफ लाए। आर डी बर्मन का कहना यह है कि उन्होंने लता मंगेशकर के इस गीत को एक दो बार सुना और तीसरी बार में कहा कि चलिए रिकॉर्डिंग रूम में। उनका मियाँ रिहर्सल तो कर लीजिए, उनका मैं रिहर्सल बस डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होगी, अब रिहर्सल नहीं होगी। और फिर उन्होंने ये गीत रिकॉर्ड कराया जिसे मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश किया। और जो गीत पहले आर डी बर्मन ने आनंद बख्शी का लिखा हुआ और फिल्म महबूबा 1976 की फिल्म का रिकॉर्ड किया, वो कुछ यूं था।

और दोस्तों ये था आज का आपका पसंदीदा सेगमेंट, एक शायर एक गीत दो आवाज़ें। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल का जो गीत है वो मुंतखब किया है हमारे मोहतरम लिसनर जनाबे शकील साहब ने, बाकी काम हमारा है। खुश आमदीद कहना चाहेंगे परदेसी मजीद साहब को, खारियां गुजरात से तशरीफ लाए हैं। कहते हैं सबको मेरा सलाम कहिए और ढेरों दुआएं आपके लिए, खुसूसी दुआएं मांगता हूं। सब सुनने वालों को और देखने वालों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। आपने एक गीत भी सुनना चाहा है जो हमने नोट कर लिया है और इंशाल्लाह उसे ज़रूर शामिल प्रोग्राम करेंगे। कमर्शियल का वक्त हुआ चाहता है। आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में, दुनिया के चार कोनों में ऑनलाइन सुना जा रहा है। और एक कसीर तादाद मेरे हमरा इस वक्त मेरे नादीदा लिसनर्स और सोते मुजाहिदों की है। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से गजल उसने शेरी में खुशामदीद कहता हूँ। और आप सबके लिए, वो तमाम अहबाब जो सिर्फ ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनके लिए खुसूसी अपनी पसंद का गीत लेकर हाजिर रहूँगा। लेकिन अभी तो कमर्शियल की जानिब बढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे वेकफील्ड की हसीन फ़जाओं में, जहाँ मौजूद हैं जनाब वक़ार मियाँ अपने अहल खाना के साथ, और आज वो स्कॉटलैंड जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं कि देर से निकल रहा हूँ, इंशाल्लाह कल भी वहीं क़याम रहेगा, लेकिन आप ये ना समझिएगा आपका प्रोग्राम मिस करूँगा। मैं अपनी मीटिंग्स इस तरह से अरेंज करता हूँ कि आपका प्रोग्राम इत्मीनान से होटल में बैठ कर सुन सकूँ। शुक्रिया, जीते रहो। इंशाल्लाह कमर्शियल के वक्फे के बाद तुम्हारा तोहफा लेकर हाजिर रहेंगे। तुम्हारी ये मोहब्बत, चाहत और प्यार हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। तो बढ़ते ही कमर्शियल के वक्फे की जानिब, मुलाकात होगी कमर्शियल के वक्फे के बाद। हाँ, उसके बाद हम आपको मैनचेस्टर के सनती शहर लिए चलेंगे, जहाँ हमारे खूबसूरत लिसनर चौधरी रुखसार अहमद साहब हमारी बर्न की रौनक बढ़ा रहे हैं। उनका तोहफा उनकी नज़र करेंगे।

0: mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीड्स रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 और 16 अगस्त को एक बार फिर बोर पार्क किलिंगहा रोड ब्रेडफोर्ड में, जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे। फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए। सैटरडे एंड संडे 15th एंड 16th ऑफ अगस्त 2026 लीड्स रोड फेस्टिवल।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर ऑफ दिस ईयर्स ब्रेडफोर्ड मेला।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
6: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
9: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
11: टैक्सी लाइसेंस,
9: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
9: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: शादी, ये प्रोमो गायब हैं, कमर्शियल से जरा ख्याल रखिए और वो प्रोमो डाल दीजिए, जरूरत पता चल जाता है कि अब खत्म हुआ है। बहरहाल अब हम चलते हैं आगे और हस्ब वादा आपको लेके चल रहे हैं वेकफील्ड, जहां वकार में अपने अहल खाना के हमराह मौजूद हैं और स्कॉटलैंड जाने की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खैर वाफियत के साथ लेके जाए, खैर वाफियत से लाए। हमेशा की तरह हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। आपका तोहफा लेकर हाजिर हूँ, कबूल फरमाइए। आमद का हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, अल्लाह आपको और आपके अहले खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।

0: हमारे मोहतरम शकील भाई बनले से हमारे हम राह मौजूद हैं, और मेरे जहन से एकदम महव हो गया था, लेकिन हाँ मुझे फौरन याद आया, जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ। आइए उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि वो क्या तोहफा लाए हैं अदब के शदाइयों और शेर के मतवालों के नाम। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: वाला इबादिल्लाहि सालेहीन। शकील भाई कैसे हैं?
1: जी अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है, आपकी दुआएं हैं, आप सुनाए आप ठीक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा किया जाए अल्लाह का कम है।
1: तो तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मैं खालिश अली मीर साहब रिजाइन किया लिया है, सूफी अब्दुल करीम साहब, अयूब भाई हैं, नवीद भाई हैं, चौधरी रुखसार साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब है, तारक जुल्फी साहब, हाशमी आउसवाल है, मायूं परवेज साहब है, रहमान है, मजीद भाई, वसीम शाह, शफी अहमद नकवी साहब है, शाह साहब, महबूब अल्लाह साहब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। आपके तमाम अहबाब तक आपका मोहब्बत भरा सलाम पहुँचा सर।
1: शुक्रिया। तो ये गजल है छोटी सी, हकीम नासिर जिनकी आज बरसी है।
0: जी जी जी, आपने निशानदही की और मुझे अच्छा हुआ कि बहुत खूबसूरत शायर को लोगों तक पहुंचाने का फैसला आपने किया। कल इंशाल्लाह
1: फरमाते हैं।
0: जी अता कीजिए।
1: इस राह मोहब्बत में तो आजार मिले हैं।
0: आहा, क्या मिसरा है राह मोहब्बत में तो?
1: इस राह मोहब्बत में
0: तो आजार मिले हैं,
1: फूलों की तमन्ना थी मगर खार मिले,
0: खार मिले हैं। भाई वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: अनमोल जो इंसान था कोड़ी में बिका है।
0: आहा,
1: दुनिया के कई ऐसे भी बाजार मिले हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। जिसने भी मुझे देखा है पत्थर से नवाजा,
0: जिसने भी मुझे देखा है पत्थर से नवाजा,
1: वो कौन है फूलों के जिन्हें हार मिले हैं।
0: आहा हा हा हा, ता कीजिए। जिसने भी मुझे देखा पत्थर से नवाजा। आहा,
1: जिसने भी मुझे देखा है पत्थर से नवाजा, वो कौन है फूलों के जिन्हें हार मिले हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: मालिक ये दिया आज हवाओं से बचाना।
0: आहा, मालिक ये दिया आज हवाओं से बचाना,
1: मौसम है अजब आंधी के आसार मिले हैं।
0: वाह वाह वाह वाह। अता कीजिए, क्या तजबीहात है। वाह वाह वाह वाह।
1: मालिक ये दिया आज हवाओं से बचाना,
0: आहा,
1: मौसम है अजब आंधी के आसार मिले हैं।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या इंतखाब है साहब। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: दुनिया में फकत एक जुलेखा ही नहीं,
0: दुनिया में फकत एक जुलेखा ही नहीं,
1: हर यूसुफ सानी के खरीदार मिले।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या तस्बीहात हैं। वाह वाह वाह वाह।
1: दुनिया में फकत एक जुलेखा ही नहीं,
0: हर
1: यूसुफ सानी के खरीदार मिले हैं।
0: मिले हैं। वाह वाह वाह वाह।
1: अब उनके मिलने की शिकायत न गिला है,
0: अब उनके मिलने की शिकायत है गिला है,
1: हम जब भी मिले खुद से बेजार मिले हैं।
0: वाह वाह वाह वाह, हम जब भी मिले खुद से बेजार मिले हैं।
1: शुक्रिया। तो आखिरी शेर मत हैं।
0: अता कीजिए।
1: नासे ये तमन्ना थी मोहब्बत से मिलेंगे,
0: नासे ये तमन्ना थी कि मोहब्बत से मिलेंगे,
1: वो जब भी मिले बरसरे पैकार मिले हैं।
0: आहा, वो जब भी मिले बसरे पैकार मिले हैं। भाई वाह, मख्ता कीजिए।
1: नासिर ये तमन्ना थी मोहब्बत से मिलेंगे,
0: बहुत जानदार मख्ता है,
1: वो जब भी मिले बरसरे
0: पैकार मिले हैं। भाई वाह, क्या बात है शकील भाई। वाह वाह वाह वाह। भाई वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। हकीम नासिर की थी गजल। तो एक गजल है नाज मुराद आबादी की।
0: जी जी, अता कीजिए।
1: वो कहते हैं गुजर कर आदमी राह मुसीबत से संवरता है,
0: सच्चा मिसरा है। गुजर कर
1: मेरा है मुसीबत से संवरता है, कमर का नूर शब की जुल्मतों में ही निखरता है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: बुजुर्ग दर्दे हयाते गम नहीं मिलता कहीं कुछ भी,
0: आहा,
1: बशर दुनिया फानी में जहाँ से भी गुजरता है।
0: क्या बात है, क्या बात है शकील भाई। वाह वाह वाह, क्या इंतखाब है साहब।
1: ये सूरत कतरा शबनम, अच्छा بصورت قطرہ شبنم ہوں میں خارے گلستاں پر.
0: کیا تشبیہ ہے, کیا تشبیہ ہے بصورت, واہ واہ واہ واہ.
1: قطرہ شبنم ہوں میں خارے گلستاں پر, میرا دل میرا دل زحمت میرے درخشاں سے بھی ڈرتا ہے.
0: واہ واہ واہ واہ, کیا مرسن انتخاب ہے.
1: شاکیا فرشتوں کا گزر جن منزلوں سے غیر ممکن ہے.
0: آہا فرشتوں کا گزر,
1: فرشتوں کا گزر جن منزلوں سے غیر ممکن ہے, بشر کی عظمتیں دیکھو وہاں سے بھی گزرتا.
0: کیا بات ہے, کیا خوبصورت نعتیہ شعر اس میں آ گیا. بھائی واہ واہ واہ واہ, بھائی واہ واہ واہ واہ, کا کیجیے.
1: فرشتوں کا گزر جن منزلوں سے غیر ممکن ہے,
0: آہا
1: بشر کی عظمتیں دیکھو وہاں سے بھی
0: گزرتا ہے. بھائی واہ واہ واہ واہ, ایک مرتبہ پھر عطا کیجیے, بہت انوکھا خیال ہے.
1: فرشتوں کا گزر جن منزلوں سے غیر ممکن ہے,
0: ہائے ہائے
1: کی عظمتیں دیکھو وہاں سے بھی
0: گزرتا ہے. بھائی واہ واہ واہ واہ,
1: فنا کرتا ہے پہلے زندگی کی ہر تمنا کو,
0: فنا کرتا ہے پہلے زندگی کی ہر تمنا کو,
1: کہیں تب جا کے انسان پستی یہ غم سے ابھرتا ہے.
0: واہ واہ واہ واہ, بھائی واہ واہ واہ واہ, کا کیجیے.
1: فنا کرتا ہے پہلے زندگی کی ہر تمنا کو, کہیں تب جا کے انسان پستی یہ غم سے ابھرتا ہے.
0: واہ واہ واہ,
1: یہ دیکھا ہے نہیں بے فیض آمد ابر نیساں کی, یہ دیکھا ہے نہیں بے فیض آمد ابر نیسا کی, کوئی انجام ہوتا ہے بشر جو کچھ بھی کرتا ہے.
0: واہ واہ واہ, کیا انتخاب ہے صاحب, جتنی ذات دی جائے کم ہے. واہ واہ واہ واہ,
1: تو آخری شعر کہتے ہیں ناز مراد بتی
0: جی, عطا کیجیے.
1: اسی باعث غفور غم میں اکثر ناز ہنستے ہیں,
0: اسی باعث
1: غفور غم میں اکثر ناز ہنستے ہیں, مصیبت اور بڑھتی ہے جو غم سے جتنا ڈرتا ہے.
0: کیا سچا مقتا ہے, عطا کیجیے, بہت جاندار ہے. مصیبت اور بڑھتی ہے,
1: اس غفور غم میں اکثر ناز ہنستے ہیں, مصیبت
0: اور بڑھتی ہے
1: جو غم سے جتنا ڈرتا ہے.
0: واہ واہ واہ, بھائی واہ واہ, شکیل بھائی دل خوش کر دیا یار.
1: شکریہ, یہ ناز مراد بھی بڑی اچھی غزلیں لکھتے ہیں.
0: اچھا, میں نے کبھی نہیں پڑھا, میں پڑھوں گا, میں نام نوٹ کر لیا ہے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے, صحت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ, اللہ حافظ.

आइए सर, आपको लिए चलते हैं मैनचेस्टर के सनती शहर। हमने इंतजार करवाया है चौधरी रुखसार अहमद साहब को और उनका तोहफा उनकी नजर करते हैं। आपकी मोहब्बत और चाहतों और प्यार का बे इंतहा शुक्रिया। दुआओं के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। तोहफा हाजिर है, कबूल फरमाइए।

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: जी मिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257।
6: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 81-83 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885-428-349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज। पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
3: आइए दोस्तों, अब हम आपको खाड़ियां गुजरात पाकिस्तान लिए चलते हैं और जहां मौजूद हैं परदेसी मजीद साहब, कहते हैं कि मैं शकील साहब को सुन नहीं पाया, खाने का वक्त हो गया था, मैं खाना खा रहा था, लेकिन मुझे यकीन है कि वो जो कुछ भी लाए होंगे वो निहायत अरफा और आला होगा। जी हाँ, हमेशा की तरह शकील साहब बे इंतहा खूबसूरत कलाम के साथ हमारी बाजू में मौजूद थे, आपका सलाम हम उन्हें पहुंचा देते हैं। और अब हम आपका तोहफा आपकी नजर कर रहे हैं। ये गीत जो आज आपने पसंद किया है मेरे बड़े अजीज जान दोस्त जनाब इखलाक अहमद मरहूम की आवाज़ में है। इखलाक का हमारा साथ बहुत अरसे रहा क्योंकि वो यहीं मुकीम थे, सो हम उनकी बीमारी में हत्तुल वसा सब दोस्त मिलकर कोशिश करते रहे किसी तरह से अल्लाह ताला उन्हें शिफाय आप कर दे, लेकिन उसकी मसलहतों के आगे किसकी चली है और इखलाक अहमद हमारा साथ छोड़ गए। लेकिन वो ऐसे अमर गीत हमारे दरमियान छोड़ गए हैं जो जब जब बजेंगे तो लोग उनकी खूबसूरत आवाज़ को सराहेंगे और उनके लिए दुआए मगफरत फरमाएंगे। अल्लाह ताला मेरे यार इखलाक अहमद के दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मगफरत फरमाए। इखलाक अहमद का इंतकाल यहीं लंदन में हुआ था और तस्वीर भी यहीं हुई उनकी। बहुत खूबसूरत आवाज़ थी साहब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।

दोस्तों, ये पसंद थी परदेसी मजी साहब की खालियां गुजरात से। अब हम हमारे कंधों पर एक बोझ है। कल हमारे बड़े मोहतरम लिसनर जनाबे शहरयार साहब इख्तितामी प्रोग्राम पर तकरीबन तशरीफ लाए थे। मैंने उनसे कहा था, वादा तो नहीं करता लेकिन कोशिश करूंगा कि आपकी पसंदीदा गजल शामिल प्रोग्राम कर सकूं। गजल उनकी जरा तवील थी, सो मुझे मुलतवी करना पड़ा और ये बोझ अपने कांधों पर उठाना पड़ा। और उनसे मैंने ये वादा किया कि हम कल के प्रोग्राम में ज़रूर इसे शामिल करेंगे। सो आज अपने वादे को निभा रहा हूँ। आपको लिए चलते हैं नॉर्थ।

हॉल लंदन, जहां पर जनाब शहरयार साहब और उनके अहल खाना हमारी बज़्म में शामिल हैं और आप तमाम सामईन और नाजरीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा पेश कर रहे हैं। हम अपने कंधों के बोझ को हल्का करते हैं, आपका तोहफा आपकी नज़र करते हैं। कभी अगर ऐसा इत्तेफाक हो जाता है जब हम आपसे कहते हैं तो हम अपनी डायरी पर नोट कर लेते हैं कि ये उधार रह गया, तो अब मैं वो उधार निपटा रहा हूँ। अब मुझे बड़ी तसल्ली हो रही है, सुकून मिल रहा है और आपकी ख्वाहिश का भी एहतराम हो रहा है। शहजाद साहब आमद का बेइंतहा शुक्रिया। अल्लाह आपको, आपके अहल खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।

0: और जो शो वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल का, कमर्शियल के बाद हम एडी चौधरी साहब तशरीफ ला चुके हैं और M63 पर मौजूद हैं, तो M62 पर लिए चलेंगे, लेकिन अभी हम जाएंगे कमर्शियल के वक्फे की जानिब। ये याद दिलाते हुए कि आप सुन रहे हैं बेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर, और हमारी नशियात ऑनलाइन www.bedfordasianradio.co.uk पर दुनिया के चार कोनों में सुनी जा रही हैं।
1: मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk। दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीड रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 और 16 अगस्त को एक बार फिर मोर पार्क किलिंगा रोड ब्रेडफोर्ड में, जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे। फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ, एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए। सैटरडे एंड संडे 15th and 16th of August 2026 लीड रोड फेस्टिवल।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर ऑफ दिस ईयर्स ब्रेडफोर्ड मेला।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
6: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
1: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
13: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर। जिस दिन एक लीक तलाश कर रहा था वो मैं खैर घर छोड़ आया हूँ, कोई बात नहीं, आपका हमारे साथ है 5 बजे तक। अब हम चल रहे हैं अपने उस मोहतरम लिसनर के तोहफे की जानिब जो हमेशा अपना सफ़र अपनी पसंद के साथ तमाम करते हैं, जनाब AD चौधरी साहब। उन्होंने मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा आपको भेजा है। इसके बाद भगत सिंह साहब, हम आपको भूले नहीं हैं, आपका तोहफा आपकी नज़र करेंगे। आप जिस मोहब्बत, चाहत और प्यार से लीज से तशरीफ लाकर हमारे प्रोग्राम की ज़रूरत और तौकीर बढ़ाते हैं, वो हमारे लिए बाई से सब इफ्तिखार है। तो चलिए चलते हैं तोहफे की जानिब। मोटरवे M62 पर आमद का बहुत शुक्रिया एडी चौधरी साहब।

दोस्तों परदेशी मजीद साहब कह रहे हैं मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, मैं भूलने लगा हूं, तो कल के लिए उन्होंने आज ही गीत नोट करवा दिया है जो हमने नोट कर लिया है। इससे पहले कि हम आपको लीड्स लेकर चलें जहां भगत सिंह साहब मौजूद हैं और सुनना चाहते हैं एक खूबसूरत गीत, मैं दिल की तमाम तर गहराइयों से खुश आमदीद कहना चाहूँगा हमारे शहजादे रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात हमारी बिटिया अमरीन जहरा काजमी को, जो अभी अभी हमारी बज में तशरीफ लाए हैं और कहते हैं कि हमने हर नमाज में आपकी सेहत और सलामती के लिए दुआएं की हैं। जीते रहो, अल्लाह ताला तुम्हारी अकीदत और मोहब्बत को यहीं बरकरार रखे और तुम्हारी जोड़ी को सलामत रखे, सेहत से रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। कुछ सुनना चाहो तो ज़रूर बताना, हमें बड़ी खुशी होगी इस हसीन जोड़ी के लिए कुछ तोहफा पेश करके। अभी तो हम चल रहे हैं लीड्स, जहाँ से मोहब्बत भरा सलाम परदेशी मजीद साहब आपके लिए भी खुसूसी तौर पर भगत सिंह साहब ने भेजा है, और तमाम सामीनों नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम पेश किया है। आपका तोहफा लेकर हाजिर हूँ भगत सिंह, बहुत इंतज़ार करवाया जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ। बाज़ गीत ढूंढ कर निकालना ज़रा मुश्किल होता है, आपका आज का गीत भी उन्हीं गीतों में से एक था। तोहफा हाजिर है, कबूल कीजिए।

हो गई थी, लेकिन मैं इस कदर मसरूफ थी, मेहमान आए हुए थे, आपसे बात ना कर सकी। रात गई बात गई, आप जैसी बहनों की दुआएं मेरे साथ हैं तो मुझे फिक्र की जरूरत नहीं है। आपकी पसंद, क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त, आपका हमारे साथ है 5 बजे तक, तो हम बिला किसी ताखीर के आपका तोहफा आपकी नजर कर रहे हैं। इसी तरह से हमेशा अपनी दुआओं में शामिल रखिए। शहनाज बेडफोर्ड 18 में ये लीजिए, आपकी पसंद हाजिर है।

0: AsianRadio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: जी मिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज। पेल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team.

0: 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीड रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15-16 अगस्त को एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहा रोड ब्रेडफोर्ड में, जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे। फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए। सैटरडे एंड संडे 15th एंड 16th ऑफ अगस्त 2026 लीड रोड फेस्टिवल।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर ऑफ दिस ईयर्स ब्रेडफोर्ड मेला।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: उफ़, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
6: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
9: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
11: टैक्सी लाइसेंस,
9: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679।
9: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
9: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
9: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीड्स रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 और 16 अगस्त को एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहा रोड ब्रैडफोर्ड में, जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे। फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए। सैटरडे एंड संडे 15th and 16th of August 2026 लीड्स रोड फेस्टिवल।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर ऑफ दिस ईयर्स ब्रैडफोर्ड मेला।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
10: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
11: बालियां, अंगूठियां और हार,
10: जो दुल्हन करे सिंगार,
11: आज ही मामू काके की दुकान,
10: खालिस सोने की पहचान,
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
11: आपकी शान
10: हमारी आन,
11: क्वालिटी की पहचान।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442।
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
12: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
11: सोफी ज्वेलर्स?
12: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
11: सोफी ज्वेलर्स 1 to 1 ओकलेन BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
13: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
14: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
14: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford, Severn, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 81-83 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885-428-349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मोत्रिस दी अकाउंटेंट्स। जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम, मैं मोत्रिस दी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं मोत्रिस दी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, मैं मोत्रिस दी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453।
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
3: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.

0: 14:13 a.m. DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out...
5: Mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes the exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीड्स रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 और 16 अगस्त को एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहा रोड ब्रेडफोर्ड में जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे। फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए। सैटरडे एंड संडे 15th एंड 16th ऑफ अगस्त 2026 लीड्स रोड फेस्टिवल।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर ऑफ दिस ईयर्स ब्रैडफोर्ड मेला।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दाले मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: उफ़, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्रेग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से

0: आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
1: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
0: फर्स्ट चॉइस
1: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
0: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
1: 01274317644।
2: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
1: दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
3: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
3: बालियां, अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
3: आज ही मामू काके की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
3: आपकी शान
1: हमारी आन,
3: क्वालिटी की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
4: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
3: सोफी ज्वेलर्स?
4: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
3: सोफी ज्वेलर्स 121 ओकलेन BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
5: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
6: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
1: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
6: बस ट्रक, फोकलिफ्ट,
7: टैक्सी लाइसेंस,
6: हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
1: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
6: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
1: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड
6: 01274201679। UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर।

0: on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 81-83 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR, टेलीफोन 07-885-428-349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ,
12: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM
0: and online

स्वामी ने भी आप समाप्त कर रहे थे कुमार सानू की आवाज में, जब से तुमको देखा है सनम, जब से तुमको देखा है सनम कितने हैं बेचैन हम। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने समाप्त फरमाया, उम्मीद करते हैं ये गीत भी आपको पसंद आया होगा। जी हाँ, आने वाला गीत जनाब

दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तुमने ऐसा देखा कि कुछ हो गया, तुमने ऐसा देखा कि कुछ हो गया। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सम्मानित फरमाया अनुराधा पदवाल की आवाज में। उम्मीद करते हैं सामने ये गीत भी आपको पसंद आया होगा। चौधरी मुजफ्फर साहब आप शामिल हुए हैं और आपने कहा है कि पूरी लिस्ट हमारी शामिल कर दीजिए और चंद अशार भी, जी हाँ अशार भी हो जाएंगे और लिस्ट भी आपकी शामिल कर देते हैं जनाब। देखते हैं अशार जी, तो इसके बाद आने वाला गीत जो होगा

जनाब ये नाम करते हैं आपकी लिस्ट में देख रहा था, चौधरी आसिफ रियासत हैं, चौधरी फरियाद हैं, चौधरी रक्सार हैं और भाई नवीद राणा साहब हैं, परवेज बी डी फाइव हैं, महबूब इलाही जी है, ये हम हैं, तारक जुल्फी हैं, जवेद मीर हैं, तारक भट्ट हैं, शकील भाई हैं, हीरा जी हीरा हैं, आमिर शहजाद हैं और उस्मान चौधरी उस्मान हैं, सफीउल्लाह भाई हैं, वाजिद ड्यूसबरी हैं, अयूब भाई हैं और चौधरी उस्मान हैं और जको और जनाब सफीउल्लाह पापा शफीक हैं, शफीक भाई हैं और सलीम भाई हैं और उर्फ रफी जो कि रफी के गीत गाती हैं ज्यादा, अतीका जी हैं और जंगीर ड्यूसबरी जी हाँ, आपके जितने भी दोस्त हैं इनके नाम गीत करेंगे और आपने कहा साथ कुछ कुछ अशार भी शामिल करें। जी हाँ ये आपने हमें आदत डाल दिया है और ये चलती रहेगी। अगर तुम पास होते तो, अगर तुम पास होते तो कर्म की इंतहा करते, अगर तुम पास होते तो कर्म की इंतहा करते, तुम्हें पलकों पे रखते हम तुम्हें दिल में बसा लेते, तुम्हें पलकों पे रखते हम तुम्हें दिल में बसा लेते, अगर तुम रूठ जाते तो, अगर तुम रूठ जाते तो तुम्हें इतना मनाते हम, अगर तुम रूठ जाते तो तुम्हें इतना मनाते हम, तुम्हारी गलतियों को भी हंसी में हम उड़ा देते, तुम्हारी गलतियों को भी हंसी में हम उड़ा देते, अगर अपनी खता होती तो खुद को ही सजा देते, अगर अपनी ही खता होती तो खुद को ही सजा देते, मगर ये सब जब भी होता अगर तुम पास होते।

0: And online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीड्स रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 और 16 अगस्त को एक बार फिर बोर पार्क किलिंगहा रोड ब्रेडफोर्ड में, जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे। फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए। सैटरडे एंड संडे 15th एंड 16th ऑफ अगस्त 2026 लीड्स रोड फेस्टिवल।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर ऑफ दिस ईयर्स ब्रेडफोर्ड मेला।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
6: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider? You can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
7: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: सामने भी आप समाप्त कर रहे थे बहुत ही खूबसूरत गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में तुम मेरी बाहों में हो, बहुत ही खूबसूरत गीत था। और इस दौरान लाइन पर हमारे साथ थे, शामिल थे जनाब चौधरी रक्सार साहब, बहुत ही अच्छी बातें हुई, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही प्यारी बातें करते हैं, दुआएं देते हैं और इतना हौसला अफजाई करते हैं और हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं, ये हमारे खास दोस्त भाई हैं और जब भी कॉल होती है तो इसलिए मैं बात नहीं कर सका और गीत पे दूसरा प्ले कर दिया और चलता रहा। अभी भी उन्होंने कहा कि आने वाला गीत अभी तो 3 मिनट बाकी हैं, सोच रहा हूँ कि क्या करें, 3-4 मिनट बाकी हैं तो क्या गीत, कौन सा गीत चलाएं। तो जनाब और आपने कहा कि जितना भी चौधरी मुजफ्फर साहब की लिस्ट है सबके नाम और अपना नाम ना भूलिएगा, और जी हम अपने नाम भी करेंगे जी आने वाला गीत, लेकिन ब्रेक के बाद। अभी क्या करें जी, ब्रेक से पहले क्या करना चाहिए, फिर कुछ शायरी हो जाए तो ताकि फिर जितनी देर ब्रेक आ जाएगी। तो ये चौधरी मुजफ्फर साहब और भाई रक्सार साहब आपके नाम भी करते हैं। मोहब्बत अक्स है रब का, मोहब्बत अक्स है रब का, सुनो किस्मत से लड़ने के लिए कभी कोशिश नहीं करते। मोहब्बत अक्स है रब का, सुनो किस्मत से लड़ने की कभी कोशिश नहीं करते। मुकद्दर जब मुखालिफ हो दुआएं बे असर जाएं, तो ऐसे में बगावत की कभी कोशिश नहीं करते। मुकद्दर जब मुखालिफ हो दुआएं बे असर हो असर जाएं, तो ऐसे में बगावत की कभी कोशिश नहीं करते। किसी के साथ चलने की किसी के दिल में बसने की, किसी के साथ चलने की किसी के दिल में बसने की कभी ख्वाहिश नहीं करते। किसी एक शख्स की खातर सभी से दूर हो जाना, किसी एक शख्स की खातर सभी से दूर हो जाना, कहाँ की ये मोहब्बत है। मोहब्बत ये नहीं होती, मोहब्बत दिल में होती है। मोहब्बत ये नहीं होती, मोहब्बत दिल में होती है। मोहब्बत अक्स है रब का, मोहब्बत अक्स है रब का, जब भी ये मर नहीं सकती। मोहब्बत अक्स है रब का, जब भी ये मर नहीं सकती, हमेशा साथ चलती है। मोहब्बत अक्स है रब का, सुनो मोहब्बत अक्स है रब का। हाँ, ये शायरी चौधरी रक्सार साहब आपके नाम की, क्योंकि ब्रेक का टाइम होने वाला था तो मैंने कहा गीत को तो उतना रुक जाएगा, लेकिन शायरी कहीं भी रोक सकते हैं, लेकिन गजल पूरी होगी। मोहब्बत अक्स है रब का, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये अशार जिसने भी लिखे हैं। मोहब्बत अक्स है रब का है ये जी, मोहब्बत है ही अक्स रब का, सारी दुनिया में जितने भी अक्स हैं है उसी रब के हैं, उसकी नक्श नगारी है, उसी की ये करामात हैं, कमाल हैं, देख जहाँ जहाँ नज़र जाती है। और दिल के गरीचे क्या कहते हैं, दिमाग और दिल के जो है उसमें कुंचे खिल जाते हैं दिल के अंदर। ब्रेक आने वाली है जी, तो बहुत ही प्यारा कलाम था और मिलते हैं ब्रेक, अभी ब्रेक हो गया जनाब, इसी का इंतजार था, मिलेंगे ब्रेक के उस पार, हमारे साथ रहिएगा।
1: This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस 106
6: लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, call the studio now 01274306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
13: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

हैं, जिस वक्त से हम रेडियो पर हैं, जिस भी रेडियो पर जाते हैं हमारे साथ होते हैं, और हमारे इसलिए हमारे मेहमान खसूसी हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त भाई भी हैं। और अभी इससे पहले भाई रक्सार साहब भी आपका जिक्र कर रहे थे, तो भाई शकील साहब बहुत अच्छा लगा, और जो भी गीत आपने कहा है कोशिश करते हैं, और ये जो गीत अभी क्यों कर रखा है ये आपके नाम करेंगे, आपकी तरफ से चौधरी रक्सार साहब के नाम, भाई अनवीर दराना के नाम भी, और चौधरी मुजफ्फर साहब के नाम भी, और जितने नाम आप मेरे लिए सभी के नाम ये गीत करेंगे।

और साथ साथ ये भी चंद अशार आपके नाम करते हैं। मोहब्बत जब भी होती है सतारावार होती है, मोहब्बत जब भी होती है सतारावार होती है, बसात वक्त से बाहर, बसात वक्त से बाहर अबद के पार होती है, बसात वक्त से बाहर अबद के पार होती है। मोहब्बत जब भी हंसती है कहीं बिजली चमकती है, मोहब्बत जब भी हंसती है कहीं बिजली चमकती है, कहीं बादल बरसते हैं हवा नज़में सुनाती है, कहीं बादल बरसते हैं हवा नज़में सुनाती है, ज़मीन पर फूल खिलते हैं, ज़मीन पर फूल खिलते हैं परिंदे लौट आते हैं, ज़मीन पर फूल खिलते हैं परिंदे लौट आते हैं। मोहब्बत जब भी होती है सतारावार होती है, मोहब्बत जब भी होती है सतारावार होती है।

0: सबसे पहले तो आपके ब्रैडफोर्ड एशियन की पूरी टीम को और पीर सैयद राह बहादुर, पीर सैयद हसन शाह साहब और हमारे उस्ताद मुअज्जम मोहतरम अली जनाब मोहतरम शकील साहब आए थे और माशाल्लाह बहुत ही क्या कहते हैं कि खूबसूरत अंदाज में, कहते ना जब आते हैं तो छा जाते हैं केस वाले
1: जी,
0: कमाल कर देते हैं माशाल्लाह, क्या खूबसूरत है जी। तो चौधरी मुजफ्फर साहब है, जहांगीर भाई है, महबूब लाई जनाब मेरे प्यारे भाई, और चौधरी फरियाज साहब है, राणा नजीर साहब है, और हमारे चैंपियन परवेज भाई हैं, सभी को मेरी तरफ से मोहब्बतों भरा, चाहतों भरा, उल्फत भरा, कीदत भरा, नहायत अदब एहतराम से बहुत बहुत सलाम।
1: वालेकुम सलाम सबकी तरफ से।
0: अब आपके सामने और मोहतरम शकील साहब के सामने तो पढ़ने को कहते कि हिम्मत नहीं पड़ती यकीन करें, तो इतना हौसला बंदा कहाँ से लाए।
1: एक बात, ये हौसले वाली बात क्या, मैं बात करता हूँ आपके साथ जी? सरतारे का बेटा ना जब फिल्मों में काम किया, उसने शुरू किया ना, सरतारे के साथ मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, तो बोलते हैं कि मैंने थोड़ा सा ना शर्म से बात की ना डैड से सामने, तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म है, इसमें रिश्ता नहीं है मेरे साथ, मेरा आपका ना फिल्म के अंदर आपने ऐसे आना जैसे एक एक्टर दूसरे के सामने आके बात करता है, और एक जो किरदार तुम्हें मिला है उसको उस पर आपने करना है। तो ये जो आप करते हैं ना, ये बिल्कुल ना इस बात कर, समझा करें, कहीं कहीं भी हो कहीं भी, तो आप एक उस अंदाज से करना है कि आपका एक अपना किरदार है, आप उस हिसाब से बात करेंगे, तो बिल्कुल फिक्र ना करें, आप सबसे बेहतर है
0: माशाल्लाह। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि उस्तादों के सामने जो है ना, वो कहते हैं कि बोलना भी जो होता है ना, यकीन करें उस्ताद के सामने बोलना बहुत बड़ा होता है।
1: ये तो है, ये तो है।
0: तो फिर जैसे भी हो ना, उस्ताद के सामने बंदा बोल नहीं सकता के खाल, लेकिन मैं तो उस्ताद साहब को अपना सबक सुनाता हूँ के हाल, चलो ये वो देख लें कि वो इतना शगिर्द जो है माशाल्लाह तो थोड़ा बड़ा नहीं पढ़ तो सकता है ना के खाल।
1: सही है,
0: तो इसलिए मैं तो अपनी सलाह करने के लिए आ जाता हूँ, तो मैं आपका ज्यादा टाइम ही नहीं लूंगा, हो सकता है मेरे बाद भी जनाब राणा नवीर साहब भी माशाल्लाह आए और अपने मखसूस अंदाज में वो भी क्या कमाल की शायरी करते हैं जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो माशाल्लाह उनकी आवाज भी बेहतरीन है, वो गुनगुनाते भी बहुत अच्छा है
1: जी, गीत बड़े बड़े मुश्किल गीत गाते
0: हैं, पर कभी उनसे फरमाइश करनी है कि जब वो आए तो एक दफा ना चलो जी गीत ही सुना दे।
1: मुझे कह रहे थे कि आपने ना फरमाइश की थी मेहंदी हसन का गीत था एक, तो वो मुझे सेंड किया और कहते हैं ये गा के आपने सुनाना है, मैंने कहा इतनी जल्दी तो गीत सुन के, ये तो वो गीत मैं गाता था जो गाता हूँ जो कि काफी सुने होते हैं, तो अचानक गीत को पकड़ते गाना बड़ा सा मुझे, और मेहंदी हसन का गीत गाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैं निचली सुर में गाता, बड़ा मुझे रोक के अपने गले को उसका गीत गाना पड़ता है, थोड़ा सा जोर लगाओ तो मेरी आवाज बहुत ऊंची चली जाती है, तो इसलिए मैं मेहंदी हसन के चंद गीत है जो गाता हूँ जो मेरे नीचे वाले सुर में रहते हैं, यानी हल्का सा मैं आवाज इस्तेमाल करता हूँ, ज्यादा मैं किशोर की आवाज के गा, तो उन्होंने कहते हैं, मैंने कहा आप सुनाइएगा और वो मैं वैसे ढूंढ के प्ले कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, फरमाइश करेंगे जरूर, जब ये तशरीफ लाते हैं तो उनसे सुनेंगे कोई ना कोई गीत
0: इंशाल्लाह। माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे गीत आप भी गाते हैं माशाल्लाह, किशोर कुमार के वगैरह, ठीक है माशाल्लाह, मैं तो सुनता रहता हूँ ना मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन पे आप जब गाते हैं ना, आप भी कमाल करते हैं, जिसमें भी वो अमिताभ बच्चन साहब या धर्मेंद्र साहब जब भी वो किसी मूवी में भी जो काम करते हैं, जो भी गीत होते हैं ना आप माशाल्लाह बहुत अच्छे गाते हैं, यकीन करिए ऐसे लगता है जैसे अमिताभ बच्चन खुद गा रहे हैं।
1: ये मोहब्बत है आपकी, मेरे आइडियल थे वो, उनके गीत मैं ज्यादा गाता हूँ इसलिए अच्छा लगता है मुझे।
0: क्या कहने माशाल्लाह, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको वो कहते हैं ना कि इतनी खूबसूरत आवाज दी हुई है माशाल्लाह, और इतना खूबसूरत अंदाज है जी, जिस खूबसूरत आवाज अंदाज से आप माशाल्लाह गाते हैं, और माशाल्लाह जैसे आप नाते भी पढ़ते हैं कमाल करते हैं, यकीन करें जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और अल्लाह ताला इसी तरह हमें भी माशाल्लाह अपने खूबसूरत गीतों से, अपनी खूबसूरत आवाज से महसूस करते हैं, और तमाम सुनने वालों को है जी।
1: आमीन जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया।
0: तो मैं पंजाबी की शायरी लेके आया हूँ
1: जी जी,
0: और ये मैं आपके और तमाम सुनने वालों के दुआ करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो
1: इंशाल्लाह जी अरशाद,
0: अगर अच्छी लगी तो फिर उर्दू की भी आपको सुना दूंगा अगर टाइम हुआ तो।
1: हाँ जी टाइम है अभी, कोई बात नहीं जी
0: जी। बिस्मिल्लाह, शायर लिखता है, एक मुश्किल हाल नहीं होंगी उदे अगे गाल नहीं होंगी, उन्हों मेरे नाल मुहब्बत अज हो गए तो कल नहीं होंगी, सानू अपने नाल ही रख लै,
1: सानू अपने नाल ही रख लै,
0: साथू दूरी जल नहीं होंगी,
1: आहा वाह वाह,
0: ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਵਾਂ, ਮਹਿਬੂਬ ਲਾਲ ਬਾਈ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਮਾੜੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
1: ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ,
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਆਪਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨੇ ਅੱਛੀ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਲ ਸੇ ਸੁਣਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਅਬ ਯੇ ਉਰਦੂ ਕੀ ਚਾਰ ਲਾਈਨੇ ਹੈ, ਯੇ ਆਪਕੀ ਸਮਾਤ ਪੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ।
1: ਜੀ ਅਰਸ਼ਾਦ।
0: ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕੋ ਉਠਾਨੇ ਵਾਲੇ,
1: ਆਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ,
0: ਕਿਤਨੇ ਬੇਦਰਦ ਹੈ ਯੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੇ।
1: ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ,
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ,
1: ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ, ਵਾਹ,
0: ਅਬ ਕਹਾਂ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਵੋ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ।
1: ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬ।
0: ਮੈਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹੂੰ ਸਦਾ ਨੀਂਦੇ ਹੋ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਝਕੋ,
1: ਵਾਹ
0: ਵਾਹ, ਹਿਜਰ ਕਾ ਦਰਦ ਮੁਝਕੋ ਦੇ ਕੇ ਜੁਗਾਨੇ ਵਾਲੇ।
1: ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ,
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ, ਯੇ ਆਪਕੀ ਮੁਹੱਬਤੇ ਹੈਂ, ਆਪਕੀ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ। ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਯਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਹਰ ਬਾਰ ਮਨਾਤਾ ਹੂੰ ਉਸੇ,
1: ਵਾਹ,
0: ਲੋਟ ਕਰ ਆਤੇ ਨਹੀਂ ਰੂਠ ਕਰ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ।
1: ਵਾਹ ਵਾਹ, ਲੋਟ ਕਰ ਆਤੇ ਨਹੀਂ ਰੂਠ ਕਰ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ।
0: ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਆਪਕੀ ਸਮਾਪਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਉਨ ਕੇ ਸੀਨੋ ਮੇ ਵੀ ਕਭੀ ਜਾਂ ਕਰ ਦੇਖੋ,
1: ਵਾਹ,
0: ਉਨ ਕੇ ਸੀਨੋ ਮੇ ਵੀ ਕਭੀ ਜਾਂ ਕਰ ਦੇਖੋ, ਕਿਤਨੇ ਅਬਸੁਰਦਾ ਹੈ ਔਰੋਂ ਕੋ ਹਸਾਨੇ ਵਾਲੇ।
1: ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ।
0: ਮਹਿਬੂਬ ਲਾਲ ਬਾਈ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਕੋ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਕੇ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਕੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਦੋਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਤਮਾਮ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਔਰ ਗੀਤ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਤੇ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਕੋ ਆਪਕੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕੋ ਔਰ ਤਮਾਮ ਆਪਕੇ ਸਾਮਿਨ ਕੋ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼-ਓ-ਅਮਾਨ ਮੇ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਸਭੀ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁਆਏ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਕੇ ਸਾਥ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਮੁਝੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਦੁਆ ਮੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇਂਗੇ।
1: ਆਮੀਨ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਕੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤਾਲੀ ਕੋ ਗੂੰਜ ਮੇ ਹਮ ਆਪਕੋ ਵਿਦਾ ਕਰਤੇ ਹੈਂ।
0: ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਜਨਾਬ, ਤਾਲੀਓ ਕੀ ਗੂੰਜ ਮੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਟਕਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ, ਆਜ ਤੋ ਕਮਾਲ ਪਰ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਪਰ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਸਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਪੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕਦਮ, ਉਧਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਇਧਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਔਰ ਉਰਦੂ ਕੋ ਵੀ ਆਪਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਰਦੂ ਕੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਆ ਜਨਾਬ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੇ, ਔਰ ਸਾਥ ਸਾਥ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੋ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾ ਉਸਨੇ ਉਨਸੇ ਹਮਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀ ਥੀ ਕਿ ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਮਹਿਮਾਨ ਚਲੇ ਗਏ।

0: Cornish, UK. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीड रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 और 16 अगस्त को एक बार फिर बोर पार्क किलिंगा रोड ब्रेडफोर्ड में, जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे। फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए। सैटरडे एंड संडे 15th एंड 16th ऑफ अगस्त 2026 लीड रोड फेस्टिवल।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर ऑफ दिस ईयर्स ब्रैडफोर्ड मेला।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: उफ़, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
6: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
11: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
10: सोफी ज्वेलर्स?
11: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
10: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
12: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे।
13: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413

0: was a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
2: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
1: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644।
3: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
2: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
2: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
2: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477277। दुबई ज्वेलर्स,
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
2: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज। पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
9: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
10: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online. Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: 6:13 a.m. DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीड रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 और 16 अगस्त को एक बार फिर बोर पार्क किलिंगहा रोड ब्रेडफोर्ड में, जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे। फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए। सैटरडे एंड संडे 15th एंड 16th ऑफ अगस्त 2026 लीड रोड फेस्टिवल।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर ऑफ दिस ईयर्स ब्रैडफोर्ड मेला।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
6: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी चाहे बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn.
12: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: लता जी, लोग कहते हैं भी तुम्हें इतना मानती हैं, लता जी तुम्हें उस्ताद समझती हैं, तुम्हें प्यार करती, ये सब मैं समझती हूँ उनका बड़ापन है ना। लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नज़र में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। लता जी को अल्लाह ने आवाज़ दी है, इन लोगों को उनके वालिद साहब से मिला, खुदा की तरफ से उन पर करम है।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: 13 a.m. DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257।
6: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 81-83 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885-428-349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज। पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
9: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
9: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: 13 a.m. DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीड रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 और 16 अगस्त को एक बार फिर बोर पार्क किलिंगहा रोड ब्रेडफोर्ड में, जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे। फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए। सैटरडे एंड संडे 15th एंड 16th ऑफ अगस्त 2026 लीड रोड फेस्टिवल।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर ऑफ दिस ईयर्स ब्रेडफोर्ड मेला।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस 106
8: लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
10: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
11: बालियां, अंगूठियां और हार,
10: जो दुल्हन करे सिंगार,
11: आज ही मामू काके की दुकान,
10: खालिस सोने की पहचान,
11: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
11: आपकी शान
10: हमारी आन,
11: क्वालिटी की पहचान।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
12: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
13: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
12: सोफी ज्वेलर्स?
13: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
12: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
14: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
15: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
14: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
16: टैक्सी लाइसेंस,
14: हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
15: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे राइडर।
14: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
15: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
14: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
15: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
14: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260 078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे,

0: जंगली कहे, कहने तो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे,
1: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 PM. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस 81-83 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885-428-349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

0: लिंगा रोड ब्रैडफोर्ड में, जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे। फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ, एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए। सैटरडे एंड संडे 15th and 16th of August 2026 लीड्स रोड फेस्टिवल।
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर ऑफ दिस ईयर्स ब्रैडफोर्ड मेला।
0: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
2: उफ़, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
3: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
2: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
3: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
2: फर्स्ट चॉइस 106
3: लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
2: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
3: 01274317644।
4: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
0: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
0: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
5: बालियां, अंगूठियां और हार,
0: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काकी की दुकान,
0: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
0: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान,
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane Bradford BD95ER 01274491442
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स,
6: सोफी नहीं सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
1: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर।
5: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत्र रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम, मैं मूत्र रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं मूत्र रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, मैं मूत्र रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड 424453।
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio.